नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक विचार विमर्श से साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत

अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 9,99,000 फॉर्म्स वितरित किए जा चुके हैं। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए उपग्रह तकनीक पर आधारित पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंतकुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 8 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से राहत के लिए स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही ईंधन मिलेगा। नए दिशा निर्देश में 1 नवंबर से निर्माण गतिविधियां रोकने के साथ साथ सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार ने देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिन में यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। और खेलों में रांची पहली बार ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 में दोनों टीम का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अमरीका का मुकाबला बोस्निया और हर्जोगोविना से हो रहा है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। और अंत में क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: रक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतरराष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.3 MHz वर आणि प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर श्रोते हो आपण ऐकते आकाशवाणी धाराशिव केंद्र। सकाळचे 6:05 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत मंगल प्रभात हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम।

हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वच्छ भारत का है जन अभियान, घर घर तक ये पहुंचे पैगाम। गली गली सड़क सड़क पूरा शहर स्वच्छ हो, एक अकेला क्या करे इसमें सबका साथ हो। स्वच्छ बने ये भारत सारा, घर घर में फैले उजियारा। सफाई का ये पावन अभियान, मिलकर बनाएं भारत महान।

0: बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान, भारत, मानव

0: संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के 2 तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर

0: पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की

0: इस सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए, जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
3: श्रोते, आपली प्रसन्न सकाळ सुरेल करणारी आकाशवाणी धाराशिव केंद्राची ही प्रसारण सभा आपण ऐकतोय FM 101.3 MHz आणि प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर। सकाळचे 8:15 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम लखलख चंदेरी। श्रोते हो, आज 2 जुलै। बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज यांचा जन्मदिवस आहे। त्यांच्याविषयी जाणून घेत त्यांनी गायलेली काही गीतं आपण ऐकणार आहोत लखलख चंदेरी या कार्यक्रमात। श्रोते हो, मोहम्मद अजीज यांचा जन्म 2 जुलै 1954 कोलकाता येथे झालेला। मोहम्मद अजीज यांचं पूर्ण नाव सईद मोहम्मद अजीज उन नबी असं होतं। मोहम्मद अजीज हे हिंदी, बंगाली आणि ओडिशाच्या चित्रपटसृष्टीत गायक म्हणून प्रसिद्ध होते। रफी साहेबांच्या आवाजाशी नातं सांगणारे जे अनेक गायक नंतरच्या काळात येऊन गेले त्यापैकीच मोहम्मद अजीज हे एक म्हणता येतील। त्यांच्याविषयी आणखीन आपण जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमात। सुरुवातीला ऐकूयात मर्द या चित्रपटासाठी मोहम्मद अजीज यांनी गायलेलं प्रयाग यांचं गीत।

वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने से लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि भाई इस समय में मुझे सोना है, और रोज़ाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी मेल भेजना हो, बहुत ज़रूरी संदेश भेजना हो, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह देखने के लिए ना करें फ़ोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोज़ाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फ़ोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है या बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक ज़िद पाल लें कि सोना है समय पर और रोज़ाना, और ये ज़िद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी ज़िद है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये ज़िद ज़रूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, और इसलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए.आर. रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना। उंगली में

0: नदीना
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नदीना
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नदीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच्चे का हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।
2: एक अंधेरा

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और

0: बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।
1: हम तुम्हें

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर्स के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आई तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता मौसम।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थी, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो जरूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम। और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है, तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं। पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहाँ सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है, तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना। हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जब आप मिला, वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं, और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के संदेश हैं, मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी, एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी।

के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर, रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा, जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है, जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है, उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

वहाँ एक अबरे जवा देखो तो जरा क्यों झुकने लगा ओ हो और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा

सारे लहराती हुई बल खाती हुई ओहो फूलों से भरे

0: इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि
1: दर्शना जोगदंडकर राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, भारत जपान 16व्या शिखर परिषदेअंतर्गत दोन्ही देशांच्या प्रधानमंत्र्यांची चर्चा। केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते विकसित भारत जिरामजी योजनेचं औपचारिक उद्घाटन। मराठी भाषा भवनाचं काम वेगानं सुरू असून

होता है मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो, लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं, जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने, तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी। और साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा, ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा? अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही।

0: थी ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है। ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है। इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह। धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है सुरीले सफर में। आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह। ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं। ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वास में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति, संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता। कभी ना कभी सच्चाई सामने

ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नजर में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

0: करती है।
1: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ

0: वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने

0: ने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई।

0: इससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

कर गई काम मोहब्बत की नजर, कर गई काम मोहब्बत की नजर, उनसे दामन भी

असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शुरू में भी रोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो।

0: करता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि

0: घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
1: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
0: रुचि
1: जाती।
0: उत्पन्न होती है
1: जी,
0: जी।
1: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था। और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
1: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। ने कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
0: जी
1: सम्मानित कर दिया गया
0: बिल्कुल।
1: उन्हें। जी
0: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा, और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे, उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं। लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल। अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है, बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल। और ये जो आर्ट है कांथा कढ़ाई,
1: जी
0: ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें?
0: गीत सुनेंगे,
1: तो एक गाना सुनते हैं।
0: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: माना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे
2: हमारा
1: हंसी मजाक
2: चेहरा
1: में
2: वैसा
1: बोलते
2: ही
1: हैं
2: हो जाए।
1: वैसे ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
2: हाँ,
1: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
1: हाँ
2: फोटोज,
1: बिल्कुल,
2: ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
2: और
1: सारी
2: कुछ
1: जी।
2: तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
2: जी।
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं, तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है, और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
2: और फिर
1: जाता है, और
2: उस
1: फिर वो
2: वक्त,
1: बातें पता नहीं कहाँ तक चली जाती
2: और उस
1: हैं।
2: वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
2: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है, तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
1: बिल्कुल।
2: सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
2: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता, उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है, तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पास में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी, वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
2: एक साथी कहते हैं कि भाई, मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना, फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे,
2: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है
1: एहसास
0: वैसे।
1: तो वही करा रहा
0: और
1: है
0: वो जो है
1: ना।
0: ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है। बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जो अब दुनिया में नहीं है उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ

0: साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था? कितना
1: ये
0: मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़
0: जी
1: पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है कोई इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है,
0: जी
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना

0: करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
1: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे,
0: बिल्कुल।
1: वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था, और
0: जी
1: फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
0: बिल्कुल।
1: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
0: मदद मिले,
1: मदद मिले,
0: बिल्कुल,
1: सहयोग मिले।
0: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
1: घर में भी हाथ
0: एक्सपेक्टेशन,
1: बटाए,
0: हाँ
1: यानी
0: ये
1: पुराने
0: वाली
1: जमाने में ऐसा
0: अपेक्षा
1: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
0: नहीं,
1: सिर्फ
0: ऐसा
1: लड़कियां
0: नहीं
1: ही
0: होता
1: काम
0: था।
1: करते थे।
0: हाँ, लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इससे कोई गलत या बुरा नहीं मानना
1: जी
0: चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस से कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो, बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
1: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
0: बिल्कुल। वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है, उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है, तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
0: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एडुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करें
0: अब
1: भाई?
0: हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है, लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान लें कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना, तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रख कर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति

0: वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते, अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं, दो परिवारों, कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी
1: बिल्कुल
0: इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
1: जी। अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली। ये कहती हैं कि मेरी एक सखी हैं, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था। लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और अब जहाँ वो ससुराल में गई हैं तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करें। घर, शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए, ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
0: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी, कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी
1: बिल्कुल
0: करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल। और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
0: बहुत
1: अत्यंत
0: जरूरी है।
1: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से ही, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
0: ले
1: ले
0: सकती है,
1: सकती है,
0: अपनी
1: पा
0: इच्छा पूरी
1: सकती
0: कर
1: है, अपनी
0: सकती,
1: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा पूरी
0: हाँ
1: कर
0: पूरी
1: लेती
0: कर
1: है।
0: सकती है,
1: और वो खुशी, वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
0: पूरे
1: परिवार
0: परिवार
1: को होता है।
0: का। तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
1: बिल्कुल
0: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले, एक
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार
1: अक्सर
0: ऐसा
1: ऐसा
0: होता
1: होता तो है
0: ना।
1: हाँ?
0: पर
1: और ये
0: नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में सोचते
0: सोच
1: हैं
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों
1: ना।
0: बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया। इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या
0: खाना
1: फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है। कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप
1: बिल्कुल।
0: हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही
0: होता
1: जाता
0: है
1: है
0: ना।
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको
1: बिल्कुल
0: सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: जब
1: बहुत
0: हम
1: जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेच कर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना

0: मुस्कुराना खिलखिलाना ही भूल जाते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें। जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है, दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को। कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना, थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं। वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी, सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर
0: रहना
1: होना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो। कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से
1: बिल्कुल
0: पहले,
1: बिल्कुल।
0: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो, और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम दे।
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले।
1: चलिए

हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के

0: आंखें बंद कर लेती हूँ, वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: जी
0: सुनते
1: सर,
0: हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर घर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।
2: Hey, Duke.

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, बैंक पार्टनर से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल।
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म का। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधि सर फरमाया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है।
0: जी
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है,
0: क्या बात है।
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब,
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना। तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और KL सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे।

0: आपने यह ना देखे होंगे तो दिखना जरूर
1: जी।
0: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का स्वयं अभिनेत्री
1: जरूर जरूर
0: रोल है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
1: मोरे सजन आ
0: जाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नए रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी। और इसके जो है संगीतकार खिलचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधुक।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विद भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी जी और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर,
0: गए।
1: जी बिल्कुल
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जी, जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हैं तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है।

0: तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
1: जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने
0: बिल्कुल
1: कॉल
0: सर,
1: किया है।
0: बिल्कुल
1: बताइए क्या सुनना
0: बिल्कुल
1: चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंच चाहे गीत,
1: तो आपने खत
0: जी
1: भेजे
0: सर।
1: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
0: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
1: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने
0: जी,
1: सेलेक्ट किया
0: फिल्म
1: है?
0: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए
1: ओहो
0: मेहताब दर मेहताब।
1: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया मेरा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी विविध बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा।

0: लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं। और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है, अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएगी।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं
1: सेब
0: पेड़ों को
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं, तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बाग
1: तो
0: के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं, और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं या उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते
0: जल्दी
1: हैं।
0: आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक
0: बिल्कुल
1: केंद्र भी
0: बिल्कुल,
1: है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, हमारे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं
0: अच्छा जी, बताइए आज
1: जी।
0: के प्रोग्राम के लिए
1: तो
0: आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे, ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश

0: हैं कौन, आपका नाम बताइए।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है।
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमरदीप जी।

0: बारिश पड़ रही है
1: जी सर। आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में, और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ
0: जी
1: पे मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले
1: जी
0: साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है।
1: जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, उनसे मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया
1: मैं
0: आपका।
1: बहुत खुश हूँ सर, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने,
1: जी, न्यूज एन आजर वाला
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, और ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं।
1: बहुत
0: तो सुनिए अपनी
1: हाय
0: पसंद का गाना
1: कुमारी।
0: पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो, फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। बढ़िया
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप
1: जी
0: लोग फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है?

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत
1: हाँ
0: लेट
1: जी।
0: हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। इन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
0: अच्छा तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय जो जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को जब छुट्टियाँ मिलती है तब हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बारात के समय, फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ।
0: आपकी नज़र
1: हाँ
0: से वो
1: जी
0: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: ओ
1: दिन
0: अच्छा
1: 30
0: अच्छा
1: होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
1: हाँ जी
0: वाले
1: हाँ जी,
0: कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं। सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
0: नहीं
1: गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना, और दूसरा जाना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
0: जी जी जी
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम
0: चलो
1: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह बड़ा अच्छा लगा जान करके, और आपने टेस्ट
1: हाँ जी
0: सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं,
0: जी।
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ। लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नज़ारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं
0: आ गए हैं
1: कहाँ।
0: कहाँ, क्या बहुत
1: जी
0: ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है, सर इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जी कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्भबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आपण ऐकत होतात कार्यक्रम युववाणी. यानंतर ठीक 6 वाजता हिंदीतून आणि 6:05 इंग्रजीतून दोन्ही बातमीपत्र आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया. नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए. विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं. नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है.
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है. हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है. अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया. आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं. ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे. श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है.
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है. लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही. इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं.
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है. नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा. त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है. योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है. प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है. बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है. फीफा फुटबॉल विश्व कप

0: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ऍप सहित 558 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. यानंतर संध्याकाळी ठीक 7 वाजता आपण ऐकू शकाल प्रादेशिक बातमीपत्र. तत्पूर्वी एक संदेश.
1: इससे बेहतर कुछ नहीं. अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ. अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की

0: दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में

0: जानकारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई।

0: है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: इसी के साथ अब आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक

दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: नदी ना
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नदी ना
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नदी ना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: नफनकार तुझसा तेरे बाद आया, नफनकार तुझसा।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: भाई मोदी मैं सचेता हूँ, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।
2: एक अंधेरा लाख सितारे

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

0: बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिन, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।
1: हम तुम्हें

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: श्रोते हो, कार्यक्रमात ऐकूया रामलीला या चित्रपटासाठी भूमी त्रिदेवी यांनी गायलेलं गीत. या गीताची पसंती कळवली आहे दयानंद नगर नांदेड येथून प्रकाश जैन, संगीता जैन आणि सूरज जैन यांनी.
1: खूप खूप आभार. आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहां खास गेस्ट आए हैं राम भाई. और आप जानते हैं कि डॉन का मनोरंजन करना हमारा फर्ज छे, तो उनके ऑनर की खुशी में एक खास सॉन्ग की पेशकश करूं.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम

0: वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater,

0: angled in towards the stumps. Wyatt Hodge was looking to work it towards the offside but got a thick bottom edge, which allows a single. 20 for 1 after 2.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो दोनों टीमों की ओर से अपने अपने हिसाब से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि शबनम स्माइल जब आई तो उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत के पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो पिछला ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। तो इस बार स्टेप आउट किया है, हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव है, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में इनफैक्ट फील्डर मौजूद हैं। मैरिजन कैप आई हैं नया ओवर लेकर के। रन रेट, रन बनाने की रफ्तार 9.23 है और पिछला ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित हुआ। डैनी वियाट हॉज, कुछ मिसक्यूड शॉट्स भी थे उनके बल्ले से निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ मायने ये रखता है कि आपके खाते में रन कितने आ रहे हैं और विकेट अगर बचे हुए हैं तो फिर उसे सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद बोल्ड हो गई है, बेहतरीन कामयाबी, डैनी वियाट हॉज को आउट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, कट करना चाहती थी, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी और देखना पड़ेगा कि क्या गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ था। लगा तो ऐसा कि डायरेक्ट इंपैक्ट था स्टंप्स के ऊपर, लेकिन मैरिजन कैप जो कि एक ब्रेक थ्रू देने के लिए जानी चाहती हैं, उन्होंने डिफेंस को पियर्स कर दिया, गेंद और बल्ले के बीच में काफ़ी, इनफैक्ट बैट और पैड के बीच में अच्छा खासा फासला था और इंग्लैंड को लगता हुआ ये जोर का झटका 2.2 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
0: A good length delivery which after pitching jagged back in sharply, and that inward movement is what caught Danny Wyatt Hodge off guard. She has done very little wrong throughout this tournament. 294 runs in totality in this tournament, which includes a century, includes a couple of half centuries, and even here she had started off in good manner. She had already hit a couple of boundaries in the previous over. However, Marizaan Kaap, the heartbeat of this South African team, delivers a telling blow once again. Danny Wyatt Hodge has now been replaced by Alice Capsey in the middle. So Capsey and Natsiva Brunt out there in the middle. And this is where I think we need to have a conversation about Sophia Dunkley. Remember, Sophia Dunkley came in as the injury cover for Natsiva Brunt and scored a 49 not out in the previous game, which was played at this very ground. Before that, she got a 50 as well in one of the group stage matches, but she was dropped from the team today so that they could get Siva Brunt in. Alice Capsey, who hasn't really done anything extraordinary in this World Cup, is now in the middle and has responsibilities on her shoulder. She gets beaten on the first ball by a lovely outswinger delivered on a good length outside the off stump, and tried to poke at it, did Alice Capsey, only to watch the ball whiz away from the outside edge of her bat.
2: बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं मैरिजन कैप, और उन्होंने बहुत ही अहम सफलता दिलाई है दक्षिण अफ्रीका को। इनफैक्ट एलिस कैप्सी को उनकी जो पहली गेंद थी, स्लोअर डिलीवरी थी वो, और उसको खेलने के प्रयास में पूरी तरीके से चूकी थी मैरिजन कैप। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट के पीछे उसे गैदर किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो दो झटके पावर प्ले में, जहां बात होती है कि विस्फोटक बल्लेबाजी होती है, ताबड़तोड़ बैटिंग का नज़ारा हमें देखने को मिलता है आज की तारीख में T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर क्लब क्रिकेट में भी, और बड़े से बड़े स्कोर बनाए जाते हैं 20-20 ओवर के मुकाबलों में। और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने जो टॉस जीता, वो टॉस बहुत ही अच्छा जीता उन्होंने, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। अभी तक तो वो निर्णय सही साबित हुआ है। अगली गेंद इस बार स्टेप आउट करके धीमे से ऑन साइड में नैट्सिव ब्रंट ने पुश किया था बॉल को, जब तक फील्ड किया जाए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। तो पिछले ओवर में 16 रन खर्चे गए, लेकिन ये ओवर बिल्कुल शांत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ, और डैनी वियाट हॉज जैसे बता रहे थे दर्पण के 294 रन उन्होंने बनाए हैं। और ये अलग बात है कि आउट होकर के आज जल्दी ही पवेलियन लौट गई हैं, लेकिन अपनी टीम की ओर से 2 उन्होंने अर्धशतक जमाए थे और एक शतक भी जमाया था इस टूर्नामेंट में आज, लेकिन बल्ले से कोई खास योगदान वो नहीं दे सके। इस बार मिडिल लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, बैकफुट पर जाकर धीमे से पुश किया है, हालांकि फील्डर्स डीप में तैनात थे और शॉट मिड विकेट की दिशा में इनफैक्ट कोई फील्डर था नहीं, तो एक रन लेने में कामयाबी।

0: इसके साथ ही मैरिजन कैप का एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Seven dot balls in the first couple of overs that Marizan Kapp has delivered, and more importantly, the big wicket of Danny Wyatt-Hodge. An interesting thing that I noticed, Shivendra, was the fact that a couple of batters stepped out. We'll talk more about it. There's an appeal for LBW. However, it has been turned down by umpire Jacqueline Williams, who shows absolutely no interest. It was probably sliding down the leg side. Shabnim Ismail, the bowler, who ran in over the wicket, delivered this one on a good length, and the ball beat the inside edge of Siva Brunt's bat and hit her pad. Interestingly, Laura Wolfart shows the tee. She decides to use DRS and take this upstairs. Now, the reason why we are surprised is because to the naked eye, it seemed as if the ball would have gone down the leg side. But two things to be kept in mind. First of all, the umpires are obviously much more experienced, and therefore you tend to trust their judgment. More importantly, I think what has pushed Laura Wolfart or persuaded Laura Wolfart to take this review is the fact that the batter in question is Nat Siva Brunt, one of the most consistent performers throughout the world. And therefore, they want to get her out. And therefore, they have decided to take the review. The first replay shows us that there is no involvement of bat. Ultra Edge shows a flat line. And the ball tracker confirms exactly what we suspected. The impact is down the leg stump. It is down the leg side. So it's a horrible review. But Shivendra, I feel the only reason why they went for it is because the batter in question is Siva Brunt.
0: जो भी फैसला था, मुझे तो लगा इट इज़ वेल टेकन दर्पण, बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो खिलाड़ी क्रीज पर थी वो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, और साउथ अफ्रीका वो जो इम्पैक्ट जो उन्होंने क्रिएट किया है अपनी गेंदबाजी से, उसको वो और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और चांस लेने में कोई बुराई थी नहीं। अगर विचार विमर्श के बाद ऐसा लगता है कि हम जा सकते हैं रिव्यू के लिए, और रिव्यू बना ही इसीलिए है, कोई बात नहीं। अगर वो लॉस्ट भी हुआ तो भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गलत या बहुत खराब डिसीजन था।
4: A leg by was also stolen, by the way. Next delivery from Shabnim Ismail. Another shout for LBW. This time, Jacqueline Williams raises her finger. So does Shivendra in the commentary box of Akashvani. This looks plumb. However, Alice Capsi now has the opportunity to use DRS. She walks down 22 yards, has a conversation with her captain at the other end, who shakes her head. That means Alice Capsi will have to turn around and take the long walk back. Shabnim Ismail has picked up another wicket. England have lost 3 in 3.2 overs. They are struggling. They are huffing and puffing. 23 for 3. South Africa in the driver's seat.
0: इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती थी साउथ अफ्रीका के लिए। शबनम इस्माइल, जैसा हमने कहा था कि उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत, आज जब वो रिटायरमेंट से वापस आई हैं इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए, और उनके लिए आज के सेमीफाइनल में डिलीवर करना कितना ज़रूरी था, ये उनसे या उनके टीम प्रबंधन से ज़्यादा बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। और एलिस कैप्सी जो कि अभी अभी आई थी, 4 गेंदों में 1 रन बनाकर के पेवेलियन वापस लौट गई हैं, और शबनम इस्माइल जिन्होंने T20 विश्व कप में अपने 50 विकेट पूरे किए थे, अब वो 51 की शुभ संख्या पर पहुंच गई हैं। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, नज़र डाली जाए, तो 28 मैचों में 23 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं और 4 मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। आज लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है टॉस जीते के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए, वो शायद फिलहाल तो इस ओर इशारा कर रहा है कि पलड़ा कागज पर भले ही मैच के शुरू होने के पहले दर्पण इंग्लैंड का भारी था, लेकिन इस समय हालात बदल चुके हैं।
4: Heather Knight is the new batter. More on her after this ball runs in to deliver this one on a good length. Does Shabnim Ismail. The ball hones in towards the off stump, but in a very careful, cautious, watchful manner, presents a stubborn full face of the bat, does Heather Knight, and blocks this one. Heather Knight is a cornerstone of this English team. Remember back in 2017 when they won their last

0: विकेट मैडिसन कैप 39 विकेट लेकर के पांचवें पायदान पर हैं T20 इंटरनेशनल में, वर्ल्ड कप में जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस बार पैड्स के सहारे खेल रहा है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में आसानी के साथ एक रन मिलेगा। जो दूसरा ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए थे इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि परिस्थितियां यकायक बदल गई। हालांकि तब भी एक विकेट गिर चुका था, एमी जोन्स आउट होकर के पेविलियन वापस लौट चुकी थी, तब रन बनाने की रफ्तार 9.34 के आसपास थी। इस समय रन बनाने की रफ्तार है 6.62 रन प्रति ओवर। ओवर की आखिरी गेंद लेकर के आई थी मैडिसन कैप, ऑन साइड में खेला गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा। जब तक थ्रो आएगा तब तक दोनों बैटर छोर बदल लेंगे। पांच ओवर के बाद स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So the first quarter of the first innings of this semi-final has belonged to South Africa. Marizan Kaap has completed her spell. She has delivered 3 overs in which she gave away only 9 runs and picked up the all-important wicket of Danny Wyatt-Hodge. 9 out of the 18 deliveries she sent down were dot balls. So once again, 50% dot balls. 33 for 3 England after 5 overs, and looks like Shabnim Ismail is going to be given a third over in the power play as well. Remember, this is exactly what they did against Australia too in the first match and were criticized for it. However, Shabnim Ismail creates another opportunity. There's a big, big appeal for LBW, vehement shout. However, umpire Jacqueline Williams is unmoved. Laura Wolfart walks up to her bowler. Chloe Tryon joins the confab. So does Nadine De Klerk. They are having a discussion, and by the looks of it, I think it was Chloe Tryon who ran in from mid-off, who suggested that the ball was a little too high and therefore we should not take the review. But once again, we saw that Wolfart was entrusted because the batter in question was Nat Sivabranch. He moved back and across to stand on the off stump, and this delivery was on a good length. However, it generated some extra bounce and hit her not on the pad but on the thigh guard. Next delivery, this time alters her length. Does Shabnim Ismail delivers it on a full length in line with the middle stump. The batter presses forward and dinks it back towards the bowler. Ismail quickly moves towards her right to clean it up, and an interesting reading on the speed gun, 118 kilometers per hour, which is pretty quick as far as women's cricket is concerned. The ball tracker replay is on our monitors and it tells us that whatever Chloe Tryon was suggesting was indeed correct. The ball was indeed high and would have missed the stumps. The next delivery, it's a short delivery from Shabnam Ismail. The perfume ball, as they call it, not too far from the off stump. Sivabrant did shape up for a pull shot. However, the ball went whistling past her face, and in the end she had to bail out. 3 dot balls to start the final over of the power play. England struggling. Nat Sivabrant not quite able to find her mojo. 33 for 3 is the score after 5.3. 3 balls remaining in the power play.
0: 3 dot deliveries. Shabnam Ismail ke bare mein unki jitni tareef ki jaye kam hai. Is baar short of length game thi, khelna chahti thi offside mein. Nat Sivabrant bilkul struggle karti hui nazar aa rahi hai. Aisa kitni baar aapne suna ya dekha hoga ki unke jaise caliber ki batter, unke jaise caliber ki khiladi aur wo sangharsh karti hui nazar aa rahi ho, aur unki team ke 3 top batters power play mein hi pavilion mein vishram kar rahe ho. Aaj Sophia Dunkley ko मैच से बाहर किया गया, टीम से बाहर किया गया, क्योंकि नैट सिवरब्रांड जो कि टीम की कप्तान हैं और वो स्वस्थ होकर के, फिट होकर के मुकाबले में वापस आई हैं, आज उनके कंधों पर दोहरी तेहरी जिम्मेदारी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार ऑन साइड में, इस बार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में थी गेंद, मोड़ा गया है, एक रन से संतुष्ट होंगी। तो 4 डॉट डिलीवरीज के बाद एक सिंगल आया है इस पावर प्ले का। अब अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो सिर्फ एक गेंद फेंकी जानी शेष है। 5.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों में जो कहानी रही है, इंग्लैंड के साथ, खासतौर पर सेमीफाइनल में जब 2014 में 9 विकेट से

0: हारे थे साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको 5 रन से हार झेलनी पड़ी थी 2020 में। इसी बीच अगली गेंद खेला गया उसे बाउंड्री लाइन पर, तब तक 1 रन लेने में कामयाबी। 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स का समय है।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 35-3 at the end of the power play. England, after being asked to bat first, are in a spot of bother. Amy Jones, Danny White-Hodge and Ali Skapsey, the three batters who have been dismissed. The two most experienced batters of this team now, Nat Sivabrant and Heather Knight, are out in the middle, but both are scoring at a strike rate which is less than 100. Obviously not ideal. However, the situation demands them to be a bit watchful, a little bit circumspect, and it demands them to rebuild the situation. It demands them to steer the ship away from the rocks. Anyhow, Shivendra was telling you about England's record in the T20 World Cup semi-finals, and Jatin Sood has handed me an elongated list which tells me that England made it to the semi-finals in 2009. Of course, that is when they went on to lift the trophy. That's when they defeated their arch rivals Australia by 8 wickets. Then they defeated New Zealand in the 2012 edition. They defeated South Africa in the 2014 edition, but lost to Australia in the 2016 edition, won against India in the 2018 edition, and in the 2020 edition, the match was abandoned. It was England versus India in the semi-final, and India advanced to the final because they had a better position in the group stage. And then, of course, the 2023 semi-final where South Africa defeated England. May we add one more entry to that list? I know 2025 was the 50-over World Cup, but it was the more recent one where these two teams met in Guwahati. And once again, England suffered a one-sided drubbing. South Africa scored 319 runs batting first. Laura Wolfart scored 169 in that game. And Marizaan Kapp picked up 5 wickets. Here again, what we see is Marizaan Kapp has pretty much wrecked the top order. Marizaan Kapp picked up the wicket of Danny White-Hodge. Shabnam Ismail picked up 2 wickets, and therefore England are struggling at 35-3.
0: तो दो जो बैटर इस समय क्रीज पर हैं, दोनों बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, और ख़ासतौर पर अगर नैट सिवरब्रंट का जिक्र किया जाए, नैट सिवरब्रंट इनफैक्ट जापान में उनका जन्म हुआ था, टोक्यो में, और उनकी माता जी वो एक करियर डिप्लोमेट थी और अलग अलग देशों में उनकी तैनाती होती थी। तो बचपन में पोलैंड में रहीं जहाँ पर लीग स्तर पर फुटबॉल खेला, उसके बाद नीदरलैंड में उन्होंने बास्केटबॉल का रुख किया था, लेकिन अंततः उन्होंने क्रिकेट को चुना। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मैरिजन कैप अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और 4th ओवर है ये उनका। 9 रन सिर्फ उन्होंने खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है साउथ अफ्रीका की ओर से, और इससे बढ़िया टॉस तो कोई जीता जा ही नहीं सकता था। अभी तक की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख करके तो ओवल के मैदान पर ऐसा ही लग रहा है, साउथ अफ्रीका के जो फैंस हैं वो झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, धीमे से पुश किया है, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में पहुंची है। 1 रन लिया गया, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया, और नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट दोनों का अब इस समय प्रयास ये है कि संभल करके बल्लेबाजी की जाए और एक के बाद एक जो झटके लगे हैं टीम को उनसे उभरा जाए। और ख़ासतौर पर ये जो मिडल ओवर्स हैं 7वें ओवर से लेकर के 13-14 ओवर तक, वहाँ पर इंग्लैंड को अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा, और बदलाव यही होगा कि विकेट को बचा करके रखा जाए, क्रॉस बैटर स्ट्रोक्स या फ्लैम्बॉयंस ज़्यादा ना दिखाया जाए। इस बार गेंद हवा में उछली थी, लेकिन शॉर्ट पॉइंट विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लॉरा वॉल्वर्ट थी संभवतः वहाँ पर, गेंद को रोकने में या कैच करने में कामयाबी नहीं मिली। हालाँकि डीप से बैकअप था, 1 रन लेने में दोनों ही बैटर्स को कामयाबी, छोर बदल लिया गया। तो धीमे धीमे भाई जी सही, लेकिन इंग्लैंड के खाते में रनों का इजाफा हो रहा है। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विकेट्स को बचा करके रखना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। 9 रन बनाए हैं नैट सिवरब्रंट ने, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है, और हैदर नाइट इस समय यॉर्क करने की कोशिश है,

गेंदबाजियों का इस्तेमाल करके फाइनल की दिशा में मोड़ा गया है। उमंग खापका जहां पर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तब तक एक रन लेने का मौका दोनों बैटर्स के पास। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर सिंगल्स। लेकिन ये जो इस समय स्थिति परिस्थिति है उसमें जाहिर सी बात है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अगर इंग्लैंड के बैटर्स सिंगल केवर ले रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, उनके लिहाज से एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है।

0: और बड़ा कमांडिंग प्रभावशाली स्ट्रोक खेला, चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, हालांकि मिडविकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लेकिन गेंद उनसे दूर काफी तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लेकिन कुल मिलाकर के केवल ये चौथा चौका इस बार लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई मैरिजन कैप, और क्या पैड से टकराई है या बल्ले से लगी है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वाइड उसे करार नहीं दिया गया। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 42 3 विकेट के नुकसान पर।
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 42 for 3 after 7 overs are England, and the big news is that Marizan Karp has bowled out her 4 overs. Laura Wolfart gave her the 4th over on a trot, which is an interesting move. She was going for the kill. She realizes that the wicket of Siva Brunt and Heather Knight is as good as gold for South Africa right now, and therefore she did not hold Karp back. But they won't have her services for the remaining part of the innings now. Ayobanga Kaka has been given the ball in hand. The first change in bowling. They're not going to bowl out Shabnam Ismail just yet. Kaka, who bowls right arm medium, runs in to bowl this one from over the wicket, with the wicketkeeper Sinalo Jafta up to the stumps, delivers this one on a good length outside the off stump, and the batter flays her hands away from the body. The ball hits the bat and then runs towards deep third, where Molaba was stationed before Molaba could pick it up and throw it back to the wicketkeeper. A comfortable single was added to Heather Knight's score. She moves to 7 and England are 43 for 3 after 7.1. Nat Siva Brunt now on strike. Here comes Ayobanga Kaka to deliver what will be the second ball of her first over. Delivers this one on a good length. Once again, there is width on offer, and therefore Siva Brunt is allowed to free her arms. She plays it in a deft manner, and the ball goes meandering towards the deep point region, where Tasmin Brits does the fielding and ensures that the batter cannot get more than a single. 44 for 3 then, the score after 7.2 overs. Ayobanga Kaka usually used to take the new ball, but since Shabnam Ismail has come back, she has switched her role to that of a first change bowler. Next delivery outside the off stump, opens the face of the plate, does Heather Knight. The timing on that is good enough to beat Malaba in the deep. 4 runs.
5: ये लगा आभा का चौका।
4: Delivered on a good length, but once again there was width on offer that allowed Heather Knight to throw her hands at it. She threw an angled face at it, and the timing was good enough to beat Malaba towards her right, running from deep third, and therefore another delectable boundary has been scored. 5 boundaries in the innings so far. Heather Knight moves to 11. The next delivery, and this time she's beaten. Beaten due to extra bit of bounce. Tell you what, this delivery pitched in pretty much the same spot. Heather Knight shaped up for the same shot, because why not? However, this one, perhaps because it landed on the seam, got up steeply and therefore went over the bat. Good take from Jafta, but that extra bounce surprised Knight.
0: जी बिल्कुल, यकायक ऐसा लगा कि बॉल में बाउंस अच्छा खासा आया था, और इस बार हालांकि बढ़िया फील्डिंग है अपने बाईं ओर डाइव लगाते हुए डीप में स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, डेफिनेटली 2 रन तो बचाए गए, हालांकि 2 रन लेने से नहीं रोक सकी इंग्लैंड के बैटर्स को। तो 3 जो गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका की, मैरिजन कैप, शबनम इस्माइल और आयाबोंगा खाका, उन्होंने इस विश्व कप में 25 विकेट हासिल किए थे इस मुकाबले से पहले, और जतिन सूद बता रहे हैं कि बेस्ट इकोनॉमी इस विश्व कप में रहा है वो जॉर्जिया वेयरहैम का रहा है ऑफकोर्स, लेकिन मैरिजन कैप भी उनसे बहुत पीछे नहीं है। 6 मैचेस में 23 ओवर फेंकते हुए उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 5 का है, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम का इकोनॉमी रेट है 4.5 का। तो साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीता, दोनों टीमों में एक एक बदलाव। सोने लूस का आगमन साउथ अफ्रीका की टीम में हुआ है, जबकि इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह पर नेट सेवर ब्रंट आई हैं, जो कि इस समय बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही, डैनी वियर्ड हॉग

0: एमी जोन्स और एलिस कैप्सी तीन बैटर हैं जो कि पवेलियन में विश्राम कर रही हैं और 50 रन भी नहीं बने। इनफैक्ट पावर प्ले में 6 ओवर में 35 रन बनाए गए 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की बैटर्स के द्वारा। तो इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर था जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी आज वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया और यही कारण है कि मिडल ऑर्डर में नैट सेवरब्रांट और हैदर नाइक जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है। 50 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। मलाबा एक पहले स्पिन गेंदबाजी आक्रमण के तौर पर आई हैं। पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का उपक्रम किया था नैट सेवरब्रांट ने और एक रिव्यू वैसे बेकार हो चुका है। क्या पैड से टकराई है गेंद? और जी हाँ, लॉरा वुलवर्ट ने रिव्यू के लिए इशारा कर दिया है और एम्पायर के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो तीसरे एम्पायर के पास जाएं, क्लियर पोलोसाक के पास। एलॉय शेरिडन ने इशारा किया है थर्ड एम्पायर के लिए और मलाबा अपना स्पेल की ही शुरुआत कर रही थी। हालांकि ऐसा लगा दर्पण कि खुद गेंदबाज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी।
1: Tell you what, they are desperate to see the back of Nat Sivabrant. Once again, the batter in question is Nat Sivabrant, and that's why Laura Wolfhard was so eager to show the tee, because from where we saw it, it appeared as if there was bat involved. Malaba, the left-arm spinner, delivered this one from around the wicket. The ball drifted in towards the middle pole, and it pitched on a good length. Sivabrant loves to play behind square. She is known for those lapse shots, those scoop shots. The nutmeg, where she threads the ball from between her legs, is a very famous shot of hers. She thrives on playing those kind of shots. So her playing the reverse sweep on the first ball doesn't come across as a surprise. But the ball did hit her pad in front of the middle stump. However, we all felt that there was an inside edge before the ball went on to hit the pad, and that is exactly what Ultra Edge has also confirmed. And yes, South Africa have burnt another review. They are now out of reviews. They have used up both their reviews. This will be an interesting ploy going forward.
0: मलाबा ओवर के अगली गेंद बैक फुट पर जाकर ड्राइव किया। मेडॉन की दिशा में खिलाड़ी दीप में लॉन्ग ऑन में तैनात हैं। तब तक एक रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है। रन बनाने की रफ्तार 6.12 रन प्रति ओवर पर पहुंचती हुई 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 50 रन भी बमुश्किल तमाम आए हैं और नैट सेवरब्रांट, हालांकि मलाबा को देखने से तो ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी नहीं, लेकिन जैसा दर्पण बार बार इशारा कर रहे थे कि एक जो टेंडेंसी है खासतौर पर लॉरा वुलवर्ट की, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश हैदर नाइट की और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थी। गेंद को उन्होंने फील्ड किया। फील्डिंग आउटफील्ड में बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रही है दक्षिण अफ्रीका की अभी तक का जो मुकाबला खेला गया है और उसमें कहीं पर कोई ब्लेमिश नज़र आया नहीं है। और ये दोनों ही जो बैटर हैं नैट सेवरब्रांट या फिर हैदर नाइट, वो हेजिटेट नहीं करती अनकन्वेंशनल गैर परंपरागत स्ट्रोक्स खेलने में। जो जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, इस बार स्क्वायर लेग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला गया था। डीप में प्रोटेक्शन था, एक रन लिया गया दोनों बैटर्स के द्वारा। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर पहली गेंद वो थी जहां पर रिव्यू लिया गया था साउथ अफ्रीका की ओर से और वो रिव्यू बेकार गया, यानी उनके दोनों ही रिव्यू बेकार हो चुके हैं। और मलाबा की अगली तीन गेंदों पर एक एक रन लेने में कामयाबी मिली है। तो इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है नैट सेवरब्रांट और हैदर नाइट के द्वारा। चार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बार हाफ वॉली पर लेकर फाइन लेग की दिशा में खेला गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: तो बढ़िया चौका लंबे अंतराल के बाद आता हुआ इंग्लैंड के खाते में, हैदर नाइट के खाते में जाएगा ये और अपनी टीम के लिए उन्होंने 4 आकर्षक रन जोड़े हैं। हालांकि डीप में फील्डर तैनात थे, ऑन साइड में इनफैक्ट 3 खिलाड़ी हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। इस बार मलाबा की अच्छी वापसी, मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, धीमे से पुश किया और इसको भांपते हुए कि खिलाड़ी डीप में थे एक रन लेने में कामयाबी। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर के बाद इंग्लैंड ने बनाए 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर।

0: आभाका चौका।
1: यकायक परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और जैसा दर्पण इशारा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बैटर्स की आंखें जम चुकी हैं और एक जो गेंदबाजी अटैक था उसमें पूरी गेंदबाजी में जो धार होनी चाहिए, अगली गेंद एक बार फिर से उसे फाइनल लेग बाउंड्री की और चार रनों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है।
0: ये लगा आभा का चौका।
1: कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं इसका नमूना पेश करते हुए नैट सिवर ब्रांट और हैदर नाइट, पर्टिकुलरली नैट सिवर ब्रांट, लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट डिलीवरी, लगातार दो गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज, पिछले ओवर में 10 रन बनाए गए और पलक झपकते ही इन दोनों बैटर्स ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है ड्राइव करने के अंदाज में, हालांकि वहां पर शबनम स्माइल मौजूद थी, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, एक रन का इजाफा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 45 गेंदों में 54 रन इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा जोड़े गए हैं जिनमें नैट सिवर ब्रांट का योगदान 31 रन का और हैदर नाइट का योगदान है 21 रनों का। 77 तीन विकेट के नुकसान पर इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, धीमे से पुश किया और स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़ी थी नैट सिवर ब्रांट और हैदर नाइट और नैट सिवर ब्रांट के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, एक जो साझेदारी जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रही है वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है। मिडिल और लेग स्टंप पर ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप में बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात है, बड़ी आसानी के साथ रन मिलेगा। 11 ओवर के बाद 79 रन तीन विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Last two overs have produced 21 runs. Heather Knight and Natsiva Brunt have shifted gears. South Africa need to be careful or this game will slip out of their hands. Ayobonga Khaka comes back into the attack, delivers this one on a good length. However, it goes down the leg side and Natsiva Brunt has helped it along to the fine leg boundary for 4.
0: Ye laga Abha ka choka.
5: Yes, a poor ball, but Natsiva Brunt, after the ball had left the bowler's hand, she squared up in her stance and then played the scoop shot or the lap shot, as they call it these days. And the ball went to the right of the short fine leg fielder. Excellent placement. That is why she's so highly rated. Next delivery, what is Kaka's response going to be? She shortens her length, delivers it in line with the stumps. And there comes out the short arm pull from Natsiva Brunt. And before the ball is fielded in the deep mid-wicket region, once again, the batters hustle quickly between the wickets to take 2 runs. Once again, good hustle, good running between the wickets. This is what they are known for. Remember, folks, Siva Brunt was out with a calf injury. Yet, she's running as if her life is on stake. This is what good athletes do when the stakes are high, when it is the semi-final, when it is the big stage. Slower delivery this time around from Khaka, outside the off stump, on a foolish length. However, Siva Brunt was able to press towards it and then use her wrists to whip it towards long on and pick up a comfortable single. And just like that, Siva Brunt has moved to 41 in just 31 balls. That strike rate now, Shivendra, is giving a handsome reading.
1: 2023 के बाद से नैट सिवर ब्रंट ने एक आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर आया था जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसी बीच बैक फुट पर जाकर कट कर दिया, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है गेंद, चार रनों के लिए, हैदर नाइट के बल्ले से निकला है बेहतरीन चौका।
0: ये लगा आभा का चौका।
1: 90 रन तीन विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद, और जतिन सूद बता रहे हैं कि नैट सिवर ब्रांट और हैदर नाइट के बीच आयरलैंड के खिलाफ 64 रनों की साझेदारी हुई थी इसी विश्व कप में, जबकि आयरलैंड के खिलाफ टीम खेल रही थी। और आज तो खैर ऐसी साझेदारी की बहुत ज्यादा शिद्दत से तलाश थी। 41 रन 31 गेंदों में नैट सिवर ब्रांट, 22 गेंदों में 26 रन हैदर नाइट, 11 चौके पारी में लगाए जा चुके हैं। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद कपल एक सिंगल और उसके बाद फिर से चौका। परिवर्तन के तौर पर आयाबोंगा खाका की ये गेंद डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई, उसको फॉलो थ्रू में ही फील्ड किया गया।

0: किया था उनके द्वारा, रन बनने की कोई संभावना नहीं थी। तो ये दोनों खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रण कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि आज हम इंग्लैंड के नैया को पार लगाएंगे।
1: Absolutely, that is what the team needs, that is what all of English cricket fan base is expecting from them. This delivery on a full length on the pads has been flicked away towards deep square leg for a comfortable single. That single takes Heather Knight to 27. We come to the end of the 12th over. 91 for 3 is what the score is, and this over was once again an expensive one from South Africa's perspective. It produced 4 plus 2 plus 1, if my math is right, about 12 runs out of it. So 33 runs in the last 3 overs. The momentum has shifted. South Africa desperately need a wicket, or else they will see England running away with this match. Let us tell you folks that the average first inning score in the 6 women's T20Is played at the Oval is 152. However, in the England-New Zealand match that was played here last week, we saw New Zealand score 164 and England chased it down with 16 balls to spare. So it's a good track for batting. Malaba delivers this one on the pads. It has been flicked away towards square leg, and before the fielders in the deep can converge and throw the ball back, once again the two batters have haired back and forth and converted this into a couple. Once again, fabulous, enthralling running between the wickets. Watch out for it. Malaba gets ready to deliver what will be the second ball of the 13th over. Delivers this one on the shorter side of good length, outside the off stump. Has been chopped towards extra cover, where Laura Wolfart does the fielding. No runs to be had of that ball. However, what South Africa need is a wicket.
0: 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मलाबा की गेंद स्टेप आउट किया, हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट के अंदाज में खेला है। हालांकि फील्डर डीप में तैनात थी, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: हेदर नाइट एंड नैट सिवरब्रांड, दे आर ऑन फायर। उन्होंने प्रण कर रखा है कि आज कुछ खास करके दिखाना है, और साथ ही एक और खास बात देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है उसका आज नमूना पेश किया जा रहा है मिडल ऑर्डर में इन दोनों बैटर्स के द्वारा।
1: द लास्ट बाउंड्री दैट वाज हिट बाय हेदर नाइट बिफोर द बॉल हिट द बाउंड्री कुशंस, और सो वी फेल्ट, नदीन डी क्लर्क रन अक्रॉस फ्रॉम लॉन्ग ऑफ, पुट इन अ big dive towards her right and tried to flick it away from the boundary cushions. We felt that the ball had already hit the boundary cushions, and now comes the confirmation from umpire Eloise Sheridan, albeit it comes after a delay because a boundary check was happening. It has been signaled a 4, 97 for 3 after 12.3 overs. Next delivery, Malaba this time delivers it with a slightly flatter trajectory so that the batter cannot step out on a good length around the off stump, and once again brilliant use of wrist from Heather Knight, who tucks it away into the gap between long on and deep mid wicket. And once again these two running like two cheetahs between the wicket convert it into a couple. 99 for 3 after 12.4 overs. The running between the wickets has been exhilarating.
0: 28 गेंदों में 35 रन पर पहुंच गई है हेदर नाइट, और बड़ा संयोग वाली बात यह है कि काफी देर से नैट सिवरब्रांड को बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है। उन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 41 रन पर पहुंची हैं, और 29 गेंदों में 35 पर पहुंच गई हैं हेदर नाइट, और चौथे विकेट के लिए 58 गेंदों में 76 रन इन दोनों बैटर्स द्वारा जोड़े जा चुके हैं। क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है। 99 रन इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद थी, स्टेप आउट किया, ऑन साइड में खेला, और मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन। इसके साथ ही 13 ओवर के बाद 100 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के 13 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: Last 4 overs have produced 42 runs. South Africa need a breakthrough. They go to Nadine D. Clerk, who is obviously an experienced campaigner. Hasn't done a lot of things with the ball in this tournament. However, here she induces an LBW appeal. However, the

0: that, to my untrained eye, seemed to be outside the off stump. Natsiva Brunt, beg your pardon, it was Heather Wright, the batter in question, and the umpire has turned Nadine De Klerk's appeal down. She ran in from over the wicket, delivered this one on a full length. The replay on my monitor suggests that she released it with a cross seam grip, and Heather Wright had planted her foot outside the off stump before trying the cross batted swish. She missed the ball hit her pad, and the umpire showed no interest. Let us remind you, South Africa ran out of reviews very early because they burnt two reviews wastefully. Anyhow, the next delivery outside the off stump on a full length has been driven towards deep cover for a comfortable single, which takes Heather Knight to 37 and brings Natsiva Brunt back on strike. This losing of reviews, we told you that it is going to be an interesting subplot in this story. Next delivery, a low full toss, flicked away for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: De Klerk was probably searching for a yorker, ended up drifting on the pads, failed to land this one, and Natsiva Brunt, who is now watching the ball like a football, was quickly onto it and flicked it away towards the deep backward square leg boundary to pick up four. Next delivery, again a very full length delivery. This time Nadine De Klerk pretty much lands it where she wanted it to, outside the off stump, and Natsiva Brunt squeezes it towards the backward point fielder. Anari Dirksen will ensure that the ball doesn't pass her. A dot ball for our scorer Sunil Dighe to mark.
2: Dirksen ne is gain ko roka zarur, lekin aisa laga ki haath jhatakti hui nazar aayi. Shayad is baar scoop karne ki koshish, aur koshish kamyab hoti hui. Wicket keeper ke sir ke upar se gain boundary line ke bahar ja chuki hai 4 runon ke liye.
1: Ye laga aabha ka chauka.
2: Natsiva Brunt की जितनी तारीफ की जाए कम है. बड़े संकट की घड़ी में वो आई थी जब इंग्लैंड की हालत खराब थी और तीन विकेट गिर चुके थे. इनफैक्ट 6 ओवर के बाद 35 रन बने थे तीन विकेट के नुकसान पर. अब पिछली तीन गेंदों में उन्होंने दो चौके लगा दिए हैं और 49 पर पहुंच गई हैं, और इसके साथ ही अगली गेंद को इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है. दो फील्डर्स को बाइसेक्ट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: Natsiva Brunt with that boundary has completed a half century, 53 and 35 balls, out of which 9 came, 9 boundaries were scored, all in enthralling fashion, all in riveting fashion. It's been a captain's knock, as Shivendra was just talking. She came out to bat when England were in a deep, deep spot of bother. However, she exhibited maturity, responsibility at the start, provided sturdiness to the innings, but once she got her eye in, she started exhibiting what she's known for, those innovative shots behind the square, that quick, lightning quick running between the wickets, and it has been a joy to watch and call this innings live. England 113 for 3 at the end of the 14th over. Drinks are currently on the field, and I believe, Shivendra, South Africa will be scratching their heads because they need to find a way to get this partnership broken.
2: ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है पूरी तरीके से डेरेल हो चुकी है, और अगर थोड़ा सा अगर वैगन व्हील हमारे पास सामने आएगा तो उससे लगता है, ऐसा दर्पण पता चलेगा कि मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदों को गेंदबाजी को केंद्रित किया गया है, और नैट्सिवर ब्रंट ने खासतौर पर उसका बेहतरीन भरपूर मजा लिया है. उन्होंने स्कूप शॉट्स खेले हैं, उन्होंने मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक्स खेले हैं, जब जब शॉर्ट डिलीवरीज आई हैं तब उन्होंने पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक्स खेले हैं. 19वां अर्धशतक है. T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करती हैं. चौथा अर्धशतक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप में उनका 8वां अर्धशतक है. ये आंकड़े जतिन सूद ने हम तक पहुंचाए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नैट्सिवा ब्रंट आज सोफिया डंकले की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया था. हालांकि सोफिया डंकली का जो प्रदर्शन था पिछले मुकाबले में वो कहीं से भी खराब

0: खराब नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब टीम में वापसी हुई है नेट सेवर ब्रंट की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उनको लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है, और उन्होंने बड़ी सेवा की है। उनके साथ साथ हैदर नाइट जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं, चौथे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अविस्मरणीय साझेदारी निभाई है। और साउथ अफ्रीका का जो गेंदबाजी आक्रमण जिसमें मैरिजन कैप आई, शबनम स्माइल आई, इनफैक्ट अयाबोंगा खाका भी उस तिकड़ी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, मलाबा इसी बीच नया ओवर लेकर के आई हैं, और लगातार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदबाजी की जा रही है। ये अलग बात है कि इस बार स्टोक अच्छे से खेल नहीं पाई हैदर नाइट, लेकिन 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है, 15वां ओवर प्रगति पर है।
1: दैट डिलीवरी stayed low from where I saw it, Shivendra. It was drifting on the pads and Heather Knight went for a cross-batted swipe, but it stayed low and struck her pad. Next delivery, this one generates a bit of extra bounce. This time Heather Knight was looking to go for the reverse swish or the reverse sweep, but the ball passed over the bat. The previous one went under the bat. This one goes over the bat, hits her body. There's an appeal for LBW, but shakes her head, does umpire Aloysius Sheridan. Next delivery, steps out Heather Knight, takes this one, converts this one into a full ball, and then whips it towards long on to pick up a comfortable single. So that tells me, Shivendra, that there is some uneven bounce on this wicket.
0: है ज़रूर, लेकिन जिस तरीके से उस बाउंस को या गेंदबाजी की विविधता आक्रमण को नेगोशिएट किया है नैट सेवर ब्रंट और हैदर नाइट ने, वो सराहना के काबिल है। अगली गेंद पर एक और सिंगल ले लिया गया, चूँकि खिलाड़ी दीप में तैनात हैं और क्लोजिंग फील्डिंग का लगभग कोई ज़्यादा खिलाड़ी देखने को मिल नहीं रहे। गेंदबाजी आक्रमण भी छितरता बिखरता सा नजर आ रहा है। मलाबा गेंदबाजी कर रही हैं, एक बार फिर से लेग स्टंप की दिशा में, हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में खेला गया है। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन का और इजाफा, पहली दो गेंदें डॉट डिलीवरी और उसके बाद तीन गेंदों पर सिंगल। पारी का 15वां ओवर, 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर में 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद के ओवर्स में 78 रन बिना किसी नुकसान के बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। ओवर की समाप्ति 116 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: The last over produced only 3 runs. Shivendra was accurate in his assessment of the lines that Malaba was bowling onto the body at the pads. Her idea perhaps is to not give the batters the room to free their arms, and it somewhat worked. It's a defensive tactic, but it worked in South Africa's favor. In the previous over, they gave away only 3, and an over like that is like gold for South Africa at this point in time. Shabnam Ismail has been brought back because, as we told you, South Africa desperately need a wicket. England are eyeing a big finish in the remaining 5 overs. They are 116 for 3 in 15 overs. The platform has been laid. The launch pad has been set. Can they go for a big finish? Ismail runs in to deliver this one. And Heather Knight now tries to emulate Nat Siva Brunt. She shuffles across to stand outside the off stump and then attempts to lap this one towards fine leg. However, she ends up making no contact with the ball, and the ball goes through to wicketkeeper Sinola Jafta. Heather Knight batting on 39 of 37. Clearly, her intentions to find boundaries, to go big in this 16th over against Shabnam Ismail, who's bowling her last of the game. Next delivery, it's a slower ball and it has induced a miscued shot. However, the ball lands safely in the gap and there is nobody to catch it. A single is all that Heather Knight will get, and Shabnam Ismail cannot believe that she has not got a wicket out of this delivery. It was delivered what they call in the slot these days, and therefore it was there for Heather Knight to throw her bat at it. However, the slowness of the ball is what flummoxed her. Even before the ball had arrived, she was through with the shot. The ball went straight over the top of the umpire's head and landed between the converging long on and long off fielders. A single which has taken England's score to 117. Next delivery, full in length, angling towards the leg stump. Nat Siva Brunt almost was expecting it and hence

0: was standing outside the line of the stumps, and she was able to flick it towards deep mid-wicket and pick up a comfortable single, which means that the first three balls of this over have produced two runs. The last nine balls have produced five runs. This is not what England want. They need a boundary. Anyhow, Natseva Brunt has moved to 55, and she has equaled the third highest score by a captain in the history of the Women's T20 World Cup. She joins Meg Lanning, who also scored 55. Oh, that's a brilliant shot from Heather Knight. Picks up a boundary. Ye laga, abha ka choka. Ismail went full and fast. However, she ended up giving just a glimmer of width. This was outside the off stump, and that allowed Heather Knight to open her shoulders and fetch it from there. She did not hit this one. She bludgeoned it. The ball went past the umpire like a rocket and to the straight boundary to give her four runs. Next delivery, it's a slow one. However, Knight has picked it up. There's a fielder in the team who dives forward but isn't able to catch it. It is Nadine D. Clark who has made a valiant effort but dropped the catch and buries her face into her palm, the Shabnam Ismail. This was a good length delivery, but once again an off-base ball in line with the stumps went towards her left, did Heather Knight, to allow the bat to come through, then swung her bat hard, and the replay on my monitor tells me that I jumped the gun. Nadine de Klerk did dive forward, but she ended up collecting the ball on a half volley. She did not exactly reach the ball, so it's a valiant effort and not a drop catch. Anyhow, the last ball of the over, Natseva Brunt now on strike. Good length delivery, angling in towards the off stump. Siva Brunt backs away and chops it towards cover. End of the 16th, 123 for 3.
1: 23 रन पर तीन इंग्लैंड का स्कोर था और अब 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है नैटसेवा ब्रंट और उनके साथी हैदर नाइट के बीच में. और जतिन सूद बता रहे हैं कि चौथे विकेट के लिए इस विश्व कप में ये सबसे बड़ी साझेदारी है. 101 रन न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड के बीच में 101 रन बनाए गए थे इनफैक्ट शार्प और हैलिडे के बीच में, और अभी फिलहाल 100 रन बने हैं. तो जाहिर सी बात है जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ये जो आंकड़ा है ये भी पीछे छूटने वाला है. 16 ओवर के बाद 123 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर 7.69 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं. मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में एक बार फिर से आया बोंगा खाका आई हैं. नए ओवर की उन्होंने शुरुआत की है, लगभग 89-90 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करती हैं और कोई मुश्किल नहीं इसे नेगोशिएट करने में. ऑन साइड में खेला, हालांकि गेंद बाउंस करती हुई हवा में थी लेकिन फील्डर के पास नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई. बड़ी आसानी के साथ रन दिए गए और नैटसेवा ब्रंट ने जिस अंदाज में चौके लगाए हैं, खासतौर पर उन्होंने ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप पर जब उनको गेंद फेंकी गई है, पुल शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलती है, लेकिन इस बार डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग. दो रन तो खैर मिल ही जाएंगे और जहां सिंगल आ रहे थे एक रन को दो रन में बदला है, दो को तीन में बदला है, खराब गेंदों को चौकों में बदला है. और इंटरेस्टिंग बात एक और है, दर्पण की पूरी पारी में एक भी ओवर बाउंड्री या एक भी छक्का नहीं आया है. ये भी जाहिर करता है कि बल्ले को बड़ी सावधानी से गेंद के साथ कनेक्ट किया गया है. और ओवर बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिसक्यूट शॉट की बदौलत भी आ जाती है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर. ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है महिला T20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. आया बोंगा खाका की गेंद लो फुल टॉस पार, और ऐसा लगता है कि हैदर नाइट ने हमारी बात सुन ली थी. लो फुल टॉस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है 6 रनों के लिए. पहला छक्का ये लगा छक्का. जी हाँ, पारी में लगने वाला पहला छक्का 42 गेंदों में 52 रन पर पहुंच गई है हैदर नाइट. 123 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट.
0: हर 10th T20I 50. She also has 100 to her name and the first against South Africa in this long illustrious career of hers. And now unfurls a delectable inside out drive which fetches her another 4. ये लगा चौका. This was a slower delivery, perhaps the attempted leg cutter from Ayobonga Khaka outside the off stump. However,

0: on a drivable length. And Heather Knight pressed backwards so that she could get underneath the ball, and then whilst flaunting that high elbow of hers, unfurled that delectable inside-out drive towards the extra cover region. She moves to 56, England 137 for 3, looking at a score perhaps in the excess of 175 from here on in. Another slower delivery, this time it has been driven along the carpet in the same direction, in the deep extra cover region. It will be fielded by Nadine de Klerk, who runs towards her left to cut it off. 138 for 3 at the end of 17.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: अरे मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी इस सेमीफाइनल में। 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जो शुरुआती 3 बैटर्स थी, डैनी वियर्ट हॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी, आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी। लेकिन उसके बाद नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट का आगमन हुआ क्रीज पर। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है। नदीन डी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई हैं, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ की दिशा में एक रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और नदीन डी क्लार्क अपना 3रा ओवर लेकर के आई हैं। तो शबनम स्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, अयाबोंग खाका, दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज अयाबोंग खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिवर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर, खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है। ओवर पिच डिलीवरी एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए। 143 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
6: ये लगा आभा का छक्का।
5: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट। तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
0: दैट सिक्स वाज ह्यूज, 85 मीटर्स far the ball went. Oh, Nat Siva Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Nat Siva Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches, featured in the first couple of games they played in this tournament. However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently it's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls, they want to limit the damage as much as possible.
5: पिछले 5 ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर। नदीन डी क्लार्क की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे, और गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है।
6: ये लगा

0: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के, तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था। इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी लैडी डिक्लार्क की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, एक रन मिलेगा। 154 तीन विकेट के नुकसान पर इस ओवर में दो चौके, एक छक्का और दो कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रसाइज, 17.5 ओवर के बाद 154 तीन विकेट के नुकसान पर नैट सेवन रन 45 दिनों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं। हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं। 46 गेंदों में 58 रन उनके नाम पर, 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 154 तीन विकेट के नुकसान पर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 12 balls to go, 156 for 3 England, beg your pardon, 154 for 3, how many more can they get? This partnership, which is now worth 131 runs, is the highest ever in a knockout fixture in the T20 World Cup, as far as the women's are concerned. The next delivery, it's going to be bowled by Malaba, the left-arm spinner, who will be bowling her final over of the evening. Delivers this one on the shorter side of good length, angles it towards the body. Natsiva Bruns hangs back and then lofts it, chips it towards deep backward square leg to pick up a couple of runs. Next delivery, she goes for the big slog sweep, hasn't quite got it in the middle of the bat, and it will be caught at deep mid-wicket. Finally, this partnership has come to an end. Natsiva Brunt is out for 75, which happens to be the second highest score by a captain in the history of the ICC Women's T20 World Cup. Only person ahead of her is Amy Watkins of New Zealand, who scored 89 not out. Natsiva Brunt is out for a score of 75, and she will get a standing ovation, not just from the England dugout, but also from all the spectators that are present at the Oval. 75 of 47, which included 11 attractive fours and one huge 85-meter six. England are 156 for 4.
0: नैचवर ब्रंट ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने इंग्लैंड को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वो इस मुकाबले में जीत की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि क्रिकेट गौरवमयी अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी कहना इस समय जल्दबाजी होगी। प्रिया कैम का आगमन हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में चली गई थी, हालांकि विकेटकीपर भी उसको रोक नहीं पाए, गैदर नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी बात है कि बैकअप था, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक रन का इजाफा।
2: Yes, that has been signalled as byes by the on-field umpire. That takes England's score to 157. Heather Knight once again back on strike. Malaba at the top of her mark, running into bowl what will be the fourth ball of the over. Steps out, does Heather Knight, and completely miscues it. An easy catch for Laura Wolfart at extra cover. And both set batters have now been dismissed. This was a clever piece of bowling from Malaba. Just 70.4 kilometers per hour is the reading on the speed gun, which tells us that she slowed it up, hung it up, allowed the batter to come forward, but eventually Heather Knight got deceived in the flight. She was probably looking to hit it more towards long off, but ended up slicing it, and an easy catch for the South African skipper. Yes, Heather Knight has done her job with this excellent, responsible, mature 58 of 47. However, the fact that England have lost both the set batters with still about 8 deliveries to go means it could be a difference of nearly 10 runs, if not more, in their final score. And that sometimes can be the difference in the end. Danny Gibson is the new batter.
0: ये जो दो बैटर अब दर्पण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दो बेहतरीन बैटर्स के पवेलियन लौटने के बाद, फ्रेया कैंप ऑलराउंडर हैं, 173 से ऊपर का

0: स्ट्राइक रेट है और डैनी गिब्सन 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये दोनों बहुत ही सक्षम क्रिकेटर हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां शायद सिर्फ सिंगल होना चाहिए था उसे कपल में कन्वर्ट किया दोनों बैटर्स ने, प्रिया कैंप और डैनी गिब्सन। तो ये भी एक संयोग है, क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है कि जब दो बैटर्स बड़ी साझेदारी होती है उसके बाद जैसे गेंदबाजी एक पेयर में की जाती है, कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाजों का आगमन क्रीज की ओर होता है या पवेलियन की ओर होता है वो भी एक साथ होता है। 19 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं, 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड।
1: मलाबा फिनिशेस ऑफ विद 2 for 25 इन हर 4 ओवर्स, एक्सेलेंट बोलिंग फिगर्स कर्टसी दैट ब्रिलियंट फाइनल ओवर बिफोर दैट हर पेनल्टिमेट ओवर ऑल्सो यील्डेड 3, सो इट वॉज एन एक्सपेंसिव स्टार्ट फ्रॉम हर, बट अगेन इट इज नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट, इट इज अबाउट हाउ यू एंड। साउथ अफ्रीका डिड नॉट स्टार्ट दिस टूर्नामेंट ऑन द राइट नोट, दे स्टार्टेड ऑफ विद अ ड्रबिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट कैन दे finish on the right note, that is the question. England did not start this innings on the right note, but can they finish on the right note? A slow over penalty has been applied, South Africa have not bowled their overs in time, which means now they will have to have an extra fielder inside the 25 yard circle, which means they can only have 3 boundary riders, deep backward square leg, deep mid wicket and long on are currently those 3 fielders. Ayobonga Khaka, who has been expensive today, 35 runs off her 3 overs, is going to be bowling the final over. The keeper is up to the stumps, Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike, delivers this one on a very full length, does Ayobonga Khaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid wicket, where Nadine de Klerk does the fielding and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
0: आयाबोंगा खाका अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के आई हैं, 36 रन उन्होंने खर्चे हैं, पहली सफलता की तलाश है। मलाबा का पिछला ओवर साउथ अफ्रीका के लिहाज से बड़ा सुनहरा ओवर कहा जा सकता है, जहां उन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे। फिलहाल फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन क्रीज पर हैं, कैंप ने अभी सिर्फ 1 गेंद खेली है, रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है। और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल 3 खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्किल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं, अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप 4 खिलाड़ियों को सर्किल के बाहर तैनात कर सकते थे। 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर, रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर, अच्छी वापसी करते हुए आयाबोंगा खाका ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है, हल्का सा मूवमेंट भी स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है आयाबोंगा खाका के द्वारा 161 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। कैंप इस समय 0 पर क्रीज पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, सामने हैं गिब्सन, 3 गेंदों में 4 रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आयाबोंगा खाका की ये गेंद उसे वाइड करार दिया गया है। और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस बार उससे भी ज्यादा बाहर, एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई। तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10, इंग्लैंड 162 5 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है, 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स। साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है।
1: यू कैन सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, खाका इज ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम फ्रेया कैंप्स आर्क। फ्रेया कैंप इज नोन फॉर that bat swing of hers, she's known to unfurl those golf swings. She might not appear as the most powerful person, but this youngster can strike the ball big due to her bat swing. However, she was able to shuffle across and work that one towards the leg side on the previous occasion. Next delivery, Gibson this time shuffles to the leg side, however very intelligently Khaka delivers this one outside the off stump of the right hander, and therefore in the end, even with a stretch, Gibson cannot reach the ball. Yet another dot ball, intelligent bowling from Khaka. Next delivery, this time she delivers it in line with the leg stump. Gibson swings the bat hard, gets a top edge.

0: the ball comes swirling down towards Chloe Tryon, who was running towards her left from shot third and looks like she hasn't quite been able to catch it. Also, in her peripheral vision was Malaba, who ran in from fine leg, and both of them converged. However, it looks like the ball has hit the hands of Chloe Tryon and then spilled. And Tryon also tells Malaba, it was my catch, you did not need to be as close. Two runs meanwhile were taken. Next delivery, which was the final delivery of the innings, it is outside the off stump and looks like Danny Gibson has got an edge. No, she hasn't. Jacqueline Williams says that it is a bye. The ball trickles away to fetch England four more.
1: Ye laga abha ka choka.
0: It was a good length delivery in line with what would have been the tram line. The umpire to decide it was a wide ball, however the batter shuffled towards it and hence it hasn't been signalled a wide. Eventually Gibson was looking to guide it towards third using an open face, but she could not lay bat on ball. The ball went past her, past the wicketkeeper as well, and trickled over into the fence. That means England have ended their innings, ended their quota of 20 overs with 169 for 5. They lost 3 wickets very early, however then Natsiva Brunt and Heather Knight with an excellent partnership were able to forge a recovery. We will meet you after the innings break. For now, we will head to the studios of Akashwani for a very special program called Free Hit 20.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: मेरी मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा?
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Having lost 3 wickets for 23 runs, England staged a comeback with a stand of 133 of 90 for the 4th wicket between current and former captains Natsiva Brunt and Heather Knight, but subsequently South Africa striking back as England score 169 for 5. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
6: Ji, aur hamare sath mehmaan hai hamare Khyati Gulani, purv cricketer, Jishanul Yaqeen, purv cricketer, aur G Rajaraman, varishth khel patrakar. Raja, ये जो 169 रन बनाया है इंग्लैंड ने, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गई इंग्लैंड की टीम, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद ऐसा लग रहा था कि 180-185 तक स्कोर जा सकता है.
7: 180 तो बनता था, लेकिन दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज थे दोनों एक साथ आउट होना, एक ही ओवर में आउट होना, शायद वो थोड़ा सा भारी पड़ा है. लेकिन इंग्लैंड के पास रन काफ़ी है. मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि 150 का स्कोर डिफेंडेबल स्कोर होगा. 169 काफ़ी है उनके पास, और इंग्लैंड के पास वो गेंदबाज है जो साउथ अफ्रीका को रोक सके.
5: क्या थी इंटरेस्टिंगली दैट स्टैंड ऑफ 130 बिटवीन करंट एंड फॉर्मर कैप्टन्स, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट नॉट मच कॉन्ट्रीब्यूशंस.
8: Yeah, definitely. The way they have started and like losing 3 wickets in just 23 runs is like something odd for this big game. But after that, the way this Catherine Brunt and Heather Knight have played and the way they have stood up, it's amazing. It's commendable.
6: और जिशान, क्या यहाँ पर रणनीतिक चूक हुई है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के कप्तान से? क्योंकि अगर पावर प्ले की बात करें तो उनके जो फ्रंट लाइन गेंदबाज थे दोनों के 3-3 ओवर समाप्त हो चुके थे और कैप का 4th ओवर 7th ओवर तक समाप्त हो चुका था. इसके बाद ही इंग्लैंड ने अपनी जो पारी है वो बिल्ड किए है, क्योंकि 3 विकेट तो उन्होंने पावर प्ले में ही गंवा दिए थे.
9: बिल्कुल, थोड़ी सी कमी तो रही है साउथ अफ्रीका की, खासकर जो फील्डिंग को भी मैं देख रहा था कि उनका जो फील्डिंग का सेट करने का जो भी जगह होती है वो नहीं किया उन्होंने. आई डोंट नो कैसे क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही आपस में उन लोगों के, कैप्टन की क्या सोच थी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर रन जो बनाए हैं दोनों जो बैटर हैं उन दोनों ने जो ज़्यादातर रन बनाए हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के एरिया में और स्वीप करके इसी लेग साइड में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने. तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सोच होनी चाहिए थी कि या तो ये है कि 3 विकेट उन्होंने ले लिए थे

पावर प्ले में, तो उस वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उन्हें या उस तरह की कोई चीज़ हुई जहाँ वो मेंटल लैक किया उन्होंने वहाँ पे अपने उन चीज़ों को स्ट्रैटेजी में। उनको वो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए था कि चाहे दोनों बैटर जो थे उनके जो बैट आ रहे थे, अगर आप वॉच करेंगे उनकी बैटिंग को, तो जो भी बैट उनके आ रहे थे वो मिड विकेट के एरिया की तरफ ज़्यादा उनकी कोशिश थी मारने की, और उनका जो बिल्ट है

0: करनी चाहिए थी एक बारी और, एक ओवर और डाल करके एक ओवर और उनको रोकना चाहिए था, दो ओवर कराना चाहिए था, दो ओवर बीच बीच में ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड टीम को 140 150 के आसपास रोक सकते थे जहाँ तक बॉलिंग साइड की बात है। लेकिन जहाँ तक बैटिंग साइड की बात है, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन दोनों ने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका को उन्होंने उनकी जो बॉलिंग अटैक था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने। अब यहाँ पे ये था कि एक कोई बैटर को रहना चाहिए था, देखा था जब उन्होंने कि वो आउट हो गए हैं तो दूसरे एक को रहने की कोशिश करनी चाहिए थी आखिरी बॉल तक। अगर वो रहते तो हो सकता है कि वो जो 10-15 रन का जो लैक किया है वो भी आता और 180 और 185 के आसपास स्कोर होने चाहिए थे, जो कमी है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि यह क्रिकेट है। अगेंस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका ने 170 प्लस कुछ रन किए थे, इंडिया को रोका था उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको एक जो माइंड सेट है साउथ अफ्रीका बैटर्स का कि 170-180 रन बनाने का जो उनका अपना है, वो अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो एक मैच बहुत अच्छा बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा आखिर तक मेरे ख्याल से।
1: Now, in fact, extending Zeeshan's point, overwhelming number of runs were scored on the leg side, all variants of sweeps and then flicks being used, Raja.
2: I think they played some creative shots. You can't, I will not blame the captain too much because they were moving outside the off stump and playing the sweep or playing the reverse sweep. And you can't be setting fields for unorthodox shots, so it's tough. And I think what England did was played very smart. After they lost the three wickets, they stayed at the wicket and they played out the one big bowler that South Africa had. In fact, two of them, they played them out very carefully and went after the others. And I think South Africa bowlers did not have a plan, or maybe they had a plan and they were not able to execute it. The other bowlers, the new ball bowlers did a fantastic job for South Africa, but they needed somebody to back that up. And England was just biding its time and knew that it can go after the other bowlers and they did a fabulous job of that.
3: जी और ख्याति अगर बात करें इंग्लैंड की इस पारी की, कप्तान नैट सीवरब्रंट की वापसी, जिस तरह से वो पिछले कुछ मैचों से बाहर थी और उसके बाद ये पारी, क्या आपको लगता है कि मैच का सबसे निर्णायक पहलू साबित हो सकता है?
4: डेफिनेटली काफ इंजरी के बाद वो वापस आई हैं और उन्होंने जिस तरीके की ये पारी खेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीग स्टेज में भी खेलना इस टाइप की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉकआउट्स में जहाँ हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, अगर वहाँ पर अगर आप अपनी नर्व्स का कंट्रोल करके अपनी जो भी इंजरी है पास्ट की उसको भूल के इस तरीके से अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें, और जहाँ पर आपके जो टॉप थ्री बैटर्स लीग स्टेज में अच्छी प्रदर्शन देते हुए और यहाँ आके अगर जब वो फेल हो जाए, और आपकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज दिख गया।
1: The duo exhibiting what value experience holds in such games where nerves are involved at a very high intensity. Now turning our attention to the second innings, and we've talked about experience. Zeeshan Wolfart बहुत टाइम से रन नहीं आए उनके बल्ले से, कंस्ट्रिंग की विश्व कप से पहले कितने शानदार धुआंधार फॉर्म में थी।
0: बिल्कुल, देखिए क्रिकेट है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैच है आज के दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस रन बनाने का उनका आज का दिन, हो सकता है कि आज का दिन उनका हो जाए। बहुत बार ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक बैट्समैन या एक कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक सर्टेन जगह पे जहाँ पे ज़रूरत टीम को होती है वहाँ पर वो परफॉर्म करके अपनी टीम को निकाल के लिए, तो आज उनका हो सकता है कि वो आज दिन वापस आए और साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका को लेकर के जाएं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि टीम उनकी अच्छी है, बैटर्स उनके पास भी अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के पास में, और जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इंडियन बॉलर्स भी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उसके बावजूद उनके जो बैटर्स थे उन्होंने 170 प्लस रन किए थे इंडिया के अगेंस्ट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें दिक्कत होगी करीब तक जाने में इस मैच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये एक मैच ज़रूर से एक बेहतरीन मोड़ की तरफ, हाँ ये ज़रूर है कि शुरुआत के जो 6 ओवर हैं वो बहुत डिपेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के जीत और हार के ऊपर में।
3: राजा, 170 रन का लक्ष्य, पिच में आपको ऐसा कुछ अभी दिखा है जिससे परेशानी हो सकती है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को?
2: बाउंस कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है कि फिरकी गेंदबाज उसका

0: पूरा फायदा उठाएंगे, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, हमारे कमेंटेटर्स हमें सुनाएंगे कि पिच में जो बाउंस, एक आध बॉल जो बाउंस हुआ था उसमें विकेट ज़रूर मिला था दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन यू विल सी दैट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पे।
1: खास करके एक्लिप्सन हमने देखा है कि विश्व कप में अपना ए गेम लेकर आती हैं, शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में भी अब तक उनका रहा है।
2: जी बिल्कुल, ये अब कॉन्टेस्ट अब सेकेंड इनिंग में इट विल बी बिटवीन द बैटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्पिनर्स ऑफ इंग्लिश टीम। डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट एंड लॉरा वुलवर्ट एंड ब्रिट्स एंड मैरिजन काप और एलिस कैप्सी, एक्लिस्टन और सारा ग्लेन के बीच में कॉन्टेस्ट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतता है।
3: तो जिशान, क्या रहेगा पहला लक्ष्य इस समय साउथ अफ्रीकन टीम की जब बल्लेबाजी आएगी, वो क्या चाहेंगे? पार प्ले में कम विकेट गंवाएं, कम रन भले बने, कोई बात नहीं।
4: देखें, आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये है ज़रूर कि वो कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में 6 ओवर में हम 50-55 रन बना लें और कुछ विकेट भी ना गिरे, वो कोशिश रहती है उन लोगों की, स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये विकेट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, इस विकेट में स्लो विकेट है। इस स्लो विकेट के हिसाब से अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, अगर रन दौड़ के बनाने की वो जो कोशिश होती है एक सिंगल और डबल और उस, तो वो अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, तो मुझे लगता है कि वो इस जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए वो काबिल होंगे। लेकिन अगर वो जाएंगे बिग हिट करने के लिए, तो आपने फर्स्ट इनिंग में भी देखा है कि जो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप की, जिन्होंने 100 भी किया है, उन्होंने रन नहीं कर पाए हैं वो। तो बेहतर होगा हमारे ख्याल से कि जो शुरू का 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि शुरू का 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में खासकर। जैसे जैसे ये मैच एंड की तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो विकेट कम गिराएं, आखिर तक जाने की कोशिश करें। अगर आखिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा।
1: साउथ अफ्रीका चेज डाउन 158 अगेंस्ट इंडिया एंड कलेक्टेड 2 क्रूशियल पॉइंट्स इन द ग्रुप स्टेज। नाउ डेटसन, वी हैव सीन हर बैट एट नंबर 3 इन दिस वर्ल्ड कप, बैरिंग दैट गेम अगेंस्ट इंडिया वेयर शी कुडंट ओपन हर अकाउंट, शी इज बीन चिपिंग इन विद इंपॉर्टेंट रन्स।
0: दिस इज अ गेम वेयर एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट, इट्स नॉट अ स्मॉल स्कोर, चेजिंग 170 टू विन, everyone has to contribute, and if the top orders, the top three can get those runs, well and good for South Africa. It's going to be a challenge, Mega. I think no matter what your form is, the pressure of the scoreboard, that is going to be weighing very heavily on the batters' minds. Normally you would want to get about 45 runs in the first 6 overs without losing wickets, but South Africa will push for to make the best use of the new ball and to make the best use of power play and to try and get a good score, try and get 50-55 runs on board, and in the process they will lose wickets, and that's the nature of the beast of T20, and I think we will get to see a very fascinating contest with England being smart, England playing the strategic game better than South Africa at this point of time.
3: Khyati, इंग्लैंड की कप्तान ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है साउथ अफ्रीका की कप्तान की, उनकी अच्छी पारियां अभी तक आई नहीं है, कितना अहम रोल होगा इस बड़े रन चेज में?
2: डेफिनेटली उनको थोड़ा सा पिच इन करना होगा आज के मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ही उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अच्छा स्कोर है, अच्छा टोटल है, अब देखिए किस तरीके से इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है।
1: एंड राजा, वी हैव सीन लॉरेन बेल barring one game in the group stage give South Africa, rather England, early wickets.
0: This is a big game, semi-final. They will have to play at their best and think of contributing to the team. If you can pick up a few early wickets, nothing like that for England. But they've got a good score to defend.
1: Absolutely. 170 is what South Africa would be out in the pursuit of. Thanks a lot to each one of you for your analysis as we turn our attention to the second innings. Now, South Africa are eyeing third successive finals. England looking to win the World Cup at home.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: ओवल का मैदान जहां पर फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद T20 महिला विश्व कप के मुकाबले में, जिसका आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान और उनके साथ हैं तैस्मिन ब्रिट्स दूसरे छोर पर, और इंग्लैंड के सामने इंग्लैंड ने इनफैक्ट 169 रन बनाए तो साउथ अफ्रीका के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया है इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद लिंसे स्मिथ आई है गेंदबाजी करने के लिए और उनकी गेंद को पंच किया गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन के लिए छोर बदला है। लॉरा वॉलवर्ट ने स्कोरिंग की शुरुआत की है। तैस्मिन ब्रिट्स अब स्ट्राइक पर होंगी। तैस्मिन ब्रिट्स एक बहुत ही करिश्माई क्रिकेटर हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही करिश्माई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके बारे में जरूर हम जिक्र करेंगे। अच्छी गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप की लाइन में अंदर की ओर आती हुई, दाहिने हाथ के बैटर के लिए लो रहती हुई और बल्ला अंतिम क्षणों में अड़ाया था तैस्मिन ब्रिट्स ने। हालांकि गेंद पहले ही टिप्पा खा चुकी थी, लेकिन एक तरीके से सवाल तो बहुत गंभीर पूछा गया था लिंसे स्मिथ के द्वारा तैस्मिन ब्रिट से। एक रन बिना किसी नुकसान के 170 रन का लक्ष्य इस सेमीफाइनल में, जिसका विवरण आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के माध्यम से। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं शिवेंद्र और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, हमारे स्कोरर सुनील दीघे और स्टैटिस्टिशियन जतिन सूद। और हम ये जो दक्षिण अफ्रीका की पारी है इसका संपूर्ण विवरण आप तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से पारी आगे बढ़ती है। साउथ अफ्रीका इनफैक्ट आज टॉस जीते थे ओवल के मैदान पर और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया था। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर के पुल करने के अंदाज में खेला है तैस्मिन ब्रिट्स ने। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा उनको। एक ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की धीमी शुरुआत, दो रन बिना किसी नुकसान के।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें। के सफर में आपका हम सफर, आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: Probing over from Lindsay Smith. As such, he's a left-arm spinner who should usually be spinning the ball away from the right-hander. But what she did in the previous over, she bowled those in-swingers. Can't even call them arm balls because she literally gets the ball to swing along with the seam. She delivers them like in-swingers and got them to dart in towards the stumps. Now, an actual swing bowler into the attack. Lauren Bell from the other end delivers this one on the shorter side of good length, angling towards the body of the batter. Brits goes for a cross-batted swish, misses the ball altogether and ends up getting pinged in the abdomen region. She's down on her haunches and in pain. The ball has hit her and caused pain. There was an appeal for LBW from Lauren Bell, but obviously the ball would have gone on to miss the stumps on height. So Brits takes her time. She takes a few heavy breaths and that allows Lauren Bell a couple of moments to settle herself at the top of her mark. Now, all set to go, a wide slip in position, runs into bowl this one from over the wicket and delivers this one on a good length and it has been worked away into the vacant space in front of square leg and before Freya Kemp can run all the way to her right and field the ball outside the 25-yard circle. A couple of runs have been taken. Tasmin Brits with that moves to 3. Now, interestingly, Laura Wolfart and Tasmin Brits have come out to open the innings. Sune Luce had a very successful opening partnership with Laura Wolfart in multiple games before the World Cup. In case you have been following women's cricket, you would remember when India went on to tour South Africa earlier this year, we saw Laura Wolfart and Sune Luce put on a show. However, Sune Luce lost her form during this World Cup and hence was dropped out of the first 11, and Tasmin Brits scored that brilliant century against Bangladesh. Therefore, she has been preferred to open the innings. Full-length delivery on the off stump, which has been punched to mid-off. No runs to be had. 3 balls done in the second over. 4 without loss are South Africa. Lauren Bell ready to run in for what will be the fourth ball of the over.

0: She delivers this one on a short length outside the off stump, and Tasmin Brits arced back almost as if to shape up for a ramp shot towards third, but eventually did not go through with it. She believes that the ball is a little too high, and so does the square leg umpire Eloise Sheridan, and therefore it has been called as a wide. We are still more than 2 hours away from sunset. However, there still is long shadows on the ground. The sun is drooping towards the horizon, and therefore it is also falling into the eyes of the fielders who are stationed on the leg side boundary. So that would be something very interesting to watch as well. Lauren Bell meanwhile delivers this one on a short length once again, and once again the radar is off. This one goes way down the leg side. Another wide to be added. Tasmin Brits on 3, Laura Wolfart on 1, South Africa 6 without loss in 1.3 overs. Next delivery, this time in the slot, and Brits opens her arms, goes for a big shot, whacks it over mid on for 4.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: She's a powerful batter is Tasmin Brits. That bicep of hers on the right arm has the tattoo of the Olympics logo. And Shivendra was about to tell you about her story. She was a javelin thrower. Am I right, Shivendra? That's what you were coming to.
2: Yeah, बिल्कुल जेवलिन थ्रोअर थी और अपने देश के लिए वो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ओलंपिक्स की उनकी यात्रा अधूरी रह गई थी. लेकिन ओलंपिक्स में जो कुछ अधूरा रह गया था उसे क्रिकेट के मैदान पर पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है. और आज बहुत ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को उनकी एक बेहतरीन पारी की. एक बहुत ही शानदार पारी वो खेल भी चुकी हैं इस मुकाबले में. इस विश्व कप में 69 गेंदों में 114 रन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए थे और फिलहाल 101.5 ओवर के बाद 11 रन बने हैं साउथ अफ्रीका के सामने. टारगेट 170 रन का है. इस ओवर में एक चौका, दो वाइड डिलीवरी, लॉरेन बेल का ओवर समाप्त हुआ. दो ओवर के बाद 11 बिना किसी नुकसान के दक्षिण अफ्रीका.
3: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: A boundary on the fourth ball of the over. After that, Lauren Bell adjusted her line, delivered the next one on the pads, which was flicked away for a single. And then the last delivery was on a length to Laura Wolfart, who punched it towards cover. So a single and a dot ball after the boundary, which means at the end of the second over, 11 without loss are South Africa. Next over will be bowled by Lindsay Smith, who starts off with a delivery which is wide of off. And it has been flayed away through the backward point region for 4.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: So Tasmin Brits on the prowl. This time around the ball did not swing in with that release of hers as it had been doing in the first over. This one spun away and Brits was ready, went on to the back foot and slashed it away to the boundary. The next delivery on a good length, this time closer to the off stump, and therefore drives it off the back foot. Does Brits picks up a single, moves to 13, and what a story it has been that Shivendra was telling you. She was very close to playing in the 2012 London Olympics. Of course that did not materialize, but here in that same country, in the city of London, today she has the opportunity to do good for South Africa.
2: स्ट्राइक पर है कप्तान लॉरा वॉलवर्ट. 3 गेंदों में 1 रन. स्टेप आउट किया, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी. मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहती थी. गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कारपेट के सारे गेंद लुढ़कती हुई दूर गई थी. और लिंसे स्मिथ कई सवाल पहले ओवर में पूछती हुई नजर आई थी दोनों बैटर्स से. दूसरे ओवर में अभी तक अपेक्षाकृत कामयाब नहीं हुई. पहली गेंद पर चौका, बाद की दोनों गेंदों पर सिंगल, यानी कुल मिलाकर के 6 रन 3 गेंदों में बनाए जा चुके हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले पर लिया, ड्राइव किया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की ओर. गेंद जा रही है, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: लिंसे स्मिथ का ये ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित होता हुआ. फुल लेंथ डिलीवरी हाफ वॉली पर लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पंच किया था. दो फील्डर प्रयास कर रहे थे, प्रयास असफल रहा और कामयाब हुई बैटर. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में लगभग 18-19 मीटर का फासला था, उस गैप का इस्तेमाल किया.

0: टैस्मिन ब्रिट्स ने 12 गेंदों में 17 रन पर पहुंच चुकी हैं। एक बार फिर से इस बार पैर से टकराई है उनकी गेंद, थोड़ी सी मुश्किलों में तो हैं क्योंकि एक बार गेंद उनके थाई पैड के आसपास लगी थी, तब थोड़ा सा मुश्किल में दिखी थी, ऐसा लगा था एब्डोमेन की साइड में बॉल लगी थी। इस बार पैर पर लगी थी, स्ट्रेट बल्ले से इस बार खेला, मिड ऑफ की दिशा में गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंचती हुई। तो डॉट डिलीवरीज जो भी आती हैं वो उनका मोल सोने से कम नहीं होता है, और खासतौर पर ऐसे मुकाबले में जहां फाइनल में पहुंचना दांव पर लगा हुआ हो। और 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष, लेकिन उन्होंने अच्छी सधी हुई शुरुआत की है ये कहा जा सकता है। और जब तक साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है अगर वो डिलीवर करता है, जिसके लिए डिलीवर करना आज बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, तभी फाइनल की उनकी राह कुछ आसान हो सकती है।
1: Right, 21 without loss after 3 overs. Tasmin Brits has done the bulk of scoring. She has been the chief aggressor so far. 17 of 14 deliveries against her name. 3 boundaries has been hit, and she has been hit on the body a couple of times as well. In the previous over, there was an occasion where she inside-edged one ball onto her boot and then hobbled. But she's a tough nut to crack, and that is exactly what she's exhibiting. Meanwhile, the next delivery from Lauren Bell, the first of the fourth over, is down the leg side, and very deftly Wolfart tries to get a tickle on it. She even gets a tickle on it. However, Amy Jones, the wicketkeeper, moves to her left in order to cut it off and end the possibility of any sort of a run. So dot ball to start off with. The next delivery onto the stumps on a fuller length, and a delectable on drive from Laura Wolfart, which has been cut off superbly by Sophie Eccleston at mid-on, who moves towards her left and puts in a nimble slide in order to ensure that the South Africans do not get any more than a single. Now remember, folks, England lost to South Africa in the semi-final of the 2025 World Cup. They lost to South Africa in the semi-final of the 2023 T20 World Cup as well. And there was a commonality between those two games. What it was, I'll tell you after this ball. The next delivery on a fuller length, in line with the middle pole, and nudges it towards mid-wicket, does Tasmin Brits to pick up another single. That takes the score to 23 without loss in 3.5 overs. In both those matches, Laura Wolfart and Tasmin Brits were the heavy scorers. Wolfart scored 169 and Brits scored 45 in the ODI World Cup semi-final. And in the 2023 T20 World Cup semi-final, Wolfart scored 53, Brits scored 68. And just as I say that, Laura Wolfart picks up her first boundary.
2: Ye laga abha ka choka.
1: Delivered on the fuller side of good length. In fact, I would say it was a full delivery in the channel outside the off stump. And Laura Wolfart pressed forward and then unleashed a robust off drive. Natsiva Brunt moved towards her right and put in a dive at mid-off. However, she wasn't able to stop the ball. Such good was the timing of the bat of the South African skipper, who has now moved to 7. Next delivery, Lauren Bell pulls her length back to a good length, angles this one in towards the leg stump, 114 kilometers or thereabouts on the speed gun, and a defensive dab from Laura Wolfart. So both Wolfarts and Brits in both those semi-final victories for South Africa were the heavy scorers, which means England cannot take them lightly. They need to get them out as soon as possible. It goes without saying, doesn't it? Fourth over's last ball. Lauren Bell runs in over the wicket, and Laura Wolfart steps out. And after seeing her step out, Bell adjusts into a short ball, delivers this one outside the off stump. However, Wolfart was also able to adjust to the steeply rising delivery. She ends up cutting it towards deep backward point and picks up a comfortable single to mark the end of the fourth over. 28 without loss.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष। उन्होंने बनाए हैं 28 रन 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 7 रन प्रति ओवर। और टॉरा वुडवर्ट और टैस्मिन ब्रिट्स बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए चार्ली डीन का आगमन हुआ है। आते ही उनका स्वागत किया गया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। 4 रनों के लिए लॉरा वुडवर्ट के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन

0: सुबह का चौका।
1: शानदार अंदाज में बल्लेबाजी इन दोनों बैटर्स पर कितना दारोमदार है। अभी दर्पण ये डेटा आपके साथ साझा कर रहे थे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ड्राइव किया गया, स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर दो तीन कदम आगे बढ़ते हुए लॉरा वुलवर्ट बेहतरीन फॉर्म में दिख रही हैं। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनके बल्ले ने वो आग नहीं उगली है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि वो डिलीवर करेंगी। मिड विकेट की दिशा में अगली गेंद को खेला गया है, दोनों बैटर छोर बदलेंगे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पर सिंगल। और तैस्मिन ब्रिट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने कि पूर्व जैवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2007 में 16 वर्ष की आयु में विश्व युवा एथलेटिक्स में जैवलिन का गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए। पूरा परिवार खेलों को समर्पित है। अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी थी, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में। लेकिन न केवल बैटर बल्कि विकेटकीपर एमी जोन्स भी पूरी तरीके से बीट हुई इस पर और बाई करार दिया गया, यानी गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन बड़ा नजदीकी मामला था और गैदर भी नहीं कर पाई थी एमी जोन्स विकेट के पीछे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका को क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की जो टेंडेंसी है वो फटाफट क्रिकेट का संस्करण है उसमें आमतौर पर देखने को मिलती है। कई मरतबा उसे लाजमी भी समझा जाता है क्योंकि आपको किसी भी तरीके से रन्स बनाने हैं, जो स्कूप शॉट है या पैडल स्वीप है उस अंदाज में खासतौर पर कुछ खिलाड़ी तो जाने ही जाते हैं, जैसे नरसिंहर ब्रंट की बल्लेबाजी में हमने देखा आज। चार्ली डीन के ओवर की अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी बैक टू द बॉलर ड्राइव फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पांच ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 36 रन बिना किसी नुकसान के।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: Charlie Dean's last over produced 6 runs and now looks like Lindsay Smith is going to be bowling the final over of the power play, which is interesting because her previous over was a little bit expensive. However, Natsivar Brunt has trusted her, starts off with that arm ball which pitches outside the off stump and then angles in towards the stumps. However, Tasmin Brits brings out her own version of the reverse sweep. It's not quite a conventional reverse sweep, if there is anything conventional about the reverse sweep. It's her own version where she doesn't really crouch, doesn't really touch her knee on the floor, but in a half crouch position swishes it away towards deep third and picks up a couple. That takes her beyond 20. Next delivery angled in towards the stump off a good length, and this time Brits stays beside the line of the ball and elevates it towards mid wicket where Danny Gibson is stationed at the boundary. She runs across towards her left in order to mop it up, and only a single has been taken, which means that this is some good work from the fielder. She was able to save what should have been 2 runs. Next delivery, Laura Wolfart steps out, puts her dancing shoes on and lofts it over long on. One bounce and over the ropes for 4.
0: Ye laga abha ka choka.
6: Has Lindsay Smith become just a little bit predictable with her length? On a good length, not too far from the off pole, Wolfart jumped out of her crease and lofted it over mid-on. Currently, long off and deep mid-wicket are the two fielders outside the 25-yard circle. Once again, steps out, and this time she won't be able to clear the mid-on fielder. Sophie Eccleston has leaped towards her right and caught this. Laura Wolfart's innings has been cut short. South Africa lose their first wicket.
1: जोर का झटका लगता हुआ दक्षिण अफ्रीका को, कप्तान लॉरा वुलवर्ट आउट होकर के पेविलियन का रुख करेंगी। पिछली गेंद पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था, सिंगल बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। इस बार भी उन्होंने सर्किल को क्लियर करने की कोशिश की। मिडॉन की दिशा में सोफी एक्लिस्टन तैनात थी, गेंद हालांकि हवा में थी, अच्छी खासी हाइट थी, लेकिन अपने स्थान पर उछलते हुए छलांग लगाते हुए एक्लिस्टन ने ये बहुत ही दर्शनीय कैच लिया। 15 गेंदों में 17 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से वो रन बनाए थे लॉरा वुलवर्ट ने, और वो उन्होंने पवेलियन का रुख किया है और एक बहुत

0: तो बड़ा विकेट है ये। साउथ अफ्रीका को बहुत जोर का झटका, इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी सफलता और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये विकेट मिला है। तो 6 ओवर के बाद 35 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने, और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय एक प्राइज्ड विकेट गंवा चुकी है।
1: दे आर 43-1 विद द 2 डिलीवरी स्टिल रिमेनिंग इन द पावर प्ले। ड्रिंक्स हैव बीन कॉल्ड ऑन द फील्ड एंड जतिन सूद टेल्स मी दैट द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप फॉर साउथ अफ्रीका इन दिस वर्ल्ड कप हैज नॉट एग्जैक्टली बीन वेरी प्रोडक्टिव। दे स्कोर 2 रन्स फॉर द फर्स्ट विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द ओपनिंग गेम, 11 अगेंस्ट पाकिस्तान, 25 अगेंस्ट इंडिया, 121 against Netherlands, but after that 0 against Bangladesh, and here again 43 runs, which is a decent return but not exactly an overwhelming return. It's a decent platform that has been set. Anari Dirksen has walked out to bat at number 3, but here the bottom line is that Nat Siverbrant's move to give Lindsay Smith that extra over in the power play has brought fruits. Remember, her second over was slightly expensive. She had delivered a probing first over where she had given away only 2 runs, but in her second over she was hit for 2 boundaries and ended up giving away 10 runs in totality. Despite that, Siverbrant stuck to Smith and it yielded rewards. South Africa currently need 127 more of the remaining 86 balls.
0: तो परिस्थितियां बहुत आसान नहीं, लेकिन साथ ही कुछ भी असंभव नहीं क्रिकेट के मैदान पर, न जीत न हार। और जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करने होंगे दक्षिण अफ्रीका को। जिस तरीके से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, बेहद ख़राब शुरुआत हुई, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इनफैक्ट 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद क्या साझेदारी हुई नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट के बीच में, और इन दोनों ही बैटर्स ने उसी क्रम में अपने अर्धशतक पूरे किए, इंग्लैंड की टीम को 169 के स्कोर पर पहुंचाया। हालांकि दोनों खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक आउट हुई, और अपनी टीम की ओर से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। नैट सिवरब्रंट ने 75 रन बनाए 46 गेंदों में, और हैदर नाइट ने 58 रन बनाए 47 गेंदों में। एंडी डक्सन का आगमन हुआ है, 6 पारियां खेली हैं इस विश्व कप में, और जैसा हम इशारा कर रहे थे कि दर्पण ने भी इस ओर इशारा किया कि जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उतनी ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई नहीं साउथ अफ्रीका की ओर से जितनी उम्मीद की जा सकती है। नई बल्लेबाज डक्सन हाफ वॉले पल्ले का ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नैट सिवरब्रंट के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है और रन बनने की तो कोई संभावना है नहीं। एक अजीबोगरीब शॉट खेला गया था, हालांकि बात वही है अगर सर्किल क्लियर हो जाता तो शायद परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती थी। सिमिलर डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रन के लिए नहीं। 6 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान पर।
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 43-1 at the end of the power play, which means South Africa have had a better return than what England had of their first 6 overs. As Shivendra was telling you, they scored 35 for the loss of 3 wickets in their batting innings. However, the big wicket of Laura Wolfart has just fallen. And we are saying it's a big wicket because all of you remember what she did in the 50-over World Cup. All of you must remember what she even did in the 2023 T20 World Cup semi-final. Anyhow, England go to who is arguably their best bowler, or renowned so throughout the world. Sophie Eccleston, the left-arm spinner, begins her spell, delivers the first one on a drivable length in line with the stumps that allows Tasmin Brits to press forward and push the ball towards long on and pick up a comfortable single. So a single to start off what is the 7th over. 44-1 are South Africa in pursuit of 170. Anari Dirksen now on strike. The next delivery is slightly flighted and the catch has been dropped. Looks like it's Charlotte Dean who has put this one down. Yes, indeed, it is the England vice captain. Flighted delivery from Eccleston. inviting the big shot from Anari Dirksen. Dirksen went for the lofted drive over mid-off and stationed at the edge of the circle. Charlotte Dean backpedaled a couple of steps before leaping up in the air. She got one hand on the ball.

0: but the ball did not stick. So an opportunity goes down and a single has been added. Next delivery on a good length from Eccleston has been drilled down to long off for a single, which takes Brits to 24 in South Africa. 46 for one after 6.5 overs. A big opportunity has just been squandered.
1: इस तरीके के जो मौके आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो अगर इस तरीके के अवसर गंवाए जाते हैं तो कई मर्तबा आपको पछताना भी पड़ सकता है. इस बार मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ टेन डिलीवरी, बैक फुट पर जाकर के पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ. तो लॉरा वॉलवर्ट का विकेट छठे ओवर में लिया गया. लिंडसे स्मिथ की गेंद पर वो आउट हुई. सोफिया एक्लिस्टन का आगमन हुआ है. एक बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद है, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी है और उसे मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहती थी. टैडमिन ब्रिट्स भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, कोई मिसक्यूट शॉट नहीं गया. उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. 22 गेंदों में 24 रन बनाकर के खेल रही है. डॉट डिलीवरी 1-4 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में. पारी का 7वां ओवर है. इस बार बैकफुट पर जाकर के कट किया, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया. इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ. 7 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली. जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: South Africa need another 123 runs to win in 78 balls. Big news, Annelie Dirksen was dropped, was given a lifeline when she was on zero. She has moved to two now. At the other end is Tasmin Brits, batting on 24 of 23. And looks like Freya Kemp has been given the ball in hand. Freya Kemp, left-arm seamer, so provides a bit of variety in this particular attack. She starts off over the wicket with the keeper up to the stumps, delivers this one on the middle stump on a good length, and Dirksen was looking to flick it away towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. The leading edge takes the ball into the cover region and allows a comfortable single. However, Dirksen will not be happy with the way things have started for her. That was not a convincing shot. Now remember, Sune Luse is a part of this playing 11 today, who used to open for South Africa. She hasn't come out to bat thus far. South Africa have a deep batting lineup, and hence nobody is saying that they are out of the game just yet. But England are squeezing a few tidy overs over here. Good length delivery in line with the body has been nudged towards the square leg region for yet another comfortable single. So two singles of the first two balls to get the eighth over started. South Africa are 49 for one. The previous over fetched 4 runs, which included one drop catch. Before that, the successful over which produced Wolfart's wicket fetched only 7 runs. So a quiet face for England this. And there comes another miscued shot from Dirksen. This time the catch will be taken. It is the experienced palms of Heather Knight which complete the catch in the backward point region. A length delivery which was angled away towards outside off, slanting away from the right-hander. Annelie Dirksen pressed forward and swung her bat with ambition, only to connect with the outer half of it, and the ball went flying towards backward point, where Heather Knight had ample time to settle herself underneath it and eventually complete the catch. She is as safe as a bank, and that scratchy knock from Annelie Dirksen comes to an end. 49 for 2 after 7.3.
1: निश्चित तौर पर एक खराब स्ट्रोक खेला गया एनी डक्सन के द्वारा, और ऐसे समय जब इतने हाई स्टेक्स हो, देखने में ये आ रहा था कि पिछली 2-3 गेंदों पर भी उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले थे वो उतने कन्विंसिंग नज़र नहीं आए थे. और तारीफ करनी पड़ेगी कैंप की कि उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई है, और बहुत ही शानदार अंदाज में शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका की ओर से. जबकि एक तरफ खेल रही थी टैस्मिन ब्रिट्स और दूसरी ओर थी कप्तान लॉरा वॉलवर्ट. उसके बाद लॉरा वॉलवर्ट के आउट होने के बाद अभी अभी कुछ देर पहले एक दूसरा विकेट गिरा, और अब मैरिजन कैप का

0: आगमन हुआ है। मेडिसन कैप 5 पारियों में 119 रन बनाने में कामयाब हुई हैं इस विश्व कप में, और चूंकि बाटले समाप्त हो चुके हैं तो 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात किए जा सकते हैं, सर्किल के बाहर इनफैक्ट तैनात किए जा सकते हैं। कैंप को अपनी 3री गेंद पर विकेट मिला है। मिडल और लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट ऑफ लेंथ करायों का इस्तेमाल करके मोड़ा उसे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात थी, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें एमी जोन्स के पास, तब तक 1 रन लेने का मौका। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है और खराब स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद टकराई थी, लेकिन अच्छा कैच लिया गया और कैंप को मिलती हुई ये पहली सफलता, इंग्लैंड को मिलती हुई दूसरी सफलता। टैस्मिन ब्रिट्स 24 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रही हैं। स्लोअर डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास था, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था। 88-89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कैंप के द्वारा बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। जेंटल मीडियम पेस है, लेकिन यहां पर स्लोअर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई। 25 गेंदों में 25 रन, साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट डिलीवरी थी, फाइन लेग की दिशा में खेला है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो आ रहा था बॉलर सेंड पर, कैंप हालांकि थोड़ा एडवांस कर गई थी, लॉरेन बेल ने बड़ी तेज रफ्तार में थ्रो किया था, 1 रन लेने में कामयाबी। 8 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 51 2 विकेट के नुकसान पर।
1: राइट, 119 more needed of the remaining 72 balls. However, in the last 3 or 4 overs, you can't help but feel that England have tightened their grip on this particular context, on this particular contest. The last boundary came in the 6th over, which means we have had 15 deliveries without any boundary now, and the momentum seems to be shifting towards the home team. Remember, England have won every World Cup that they have ever hosted. It goes back to 1973, the first World Cup in the sport of cricket that was ever organized was a Women's World Cup. They won it. They won it in 1993. They won it in 2017. These are obviously the 50-over World Cups. And they won the inaugural T20 World Cup in 2009 too. Good length delivery from Sophie Eccleston, who begins her 2nd over in line with the off stump. The batter advances and drills it down towards long off to pick up a comfortable single. That single takes Brits to 27 and brings Marizan Karp back on strike. Marizan Karp prepares to face what will be the 2nd ball of the 9th over. Fuller delivery from Eccleston in line with the middle pole has been warded off to mid on. So a single and a dot ball to start the proceedings. Next delivery slightly shorter outside the off stump, opens the face of the plate, does Marizan Karp. She was looking to thread it through the gap between short third and backward point. However, the fielder at point moved swiftly to her left in order to cut it off. Looks like it was Danny Wyatt Hodge who did the fielding, and that keeps the batters down to 1. Next delivery backs away to the leg side. The Tasmin Brits picks it off the stumps, drives it towards the deep point boundary. Lindsay Smith, who was stationed at cover, runs towards the fence and then puts in a dive. And whilst she goes over the ropes, she ensures that on her way, she is able to flick the ball away from the boundary cushion. Brilliant piece of fielding this. This is the modern way of fielding. You do not go around the ball and slide it, thereby saving yourself a fraction of a second. Some people like to call it the Brendan McCullum way, but this has become very, very common. She saved a run for her team. Only 3 is what South Africa got of that delivery. Well done, Lindsay Smith. Next delivery, slightly fuller than the previous one on the pads, and this has been tucked away, clipped away neatly towards deep backward square leg. Another single to be added. So this over has thus far produced 6 runs, 1 ball remaining in it. But the most important thing, South Africa have still not found the boundary. Next delivery, it has been drilled down to long on. In fact, jackhammered down to long on, should I say. That's how hard the batter hit it on that occasion. In fact, the non-striker was lucky to get out of the way. It was Tasmin Brits who fetches a single to herself with that. And that marks the end of the 9th over, 58-2.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने

0: और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य है 170 रन बनाकर के इस मैच को जीतने का, सेमीफाइनल जीतने का, फाइनल में प्रवेश करने का। और इंग्लैंड की ओर से कैंप आई है नया ओवर लेकर के, हालांकि उनकी पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर है, पैड से टकराई है। सामने है टैस्मिन ब्रिट्स, विचार विमर्श चल रहा है, हालांकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए जाएगी, क्योंकि कैंप जिन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल किया था और जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, काफ़ी सवाल पूछते हुए मैदान पर उत्सव सा माहौल है और ख़ासतौर पर इंग्लिश खेमे में इस समय काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। कैंप की ये गेंद इस बार शॉर्ट डिलीवरी ऑन साइड में पुल करने के अंदाज में खेला, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, ब्रिट्स के स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छिटक करके रह गई, एक रन लेने का अवसर दोनों बैटर्स के पास। तो जो गेंद की रफ्तार है उसमें कैंप बहुत ही चतुराईपूर्ण परिवर्तन करती हुई नजर आती हैं और इसी का परिणाम है कि उनकी गेंदों पर आज़ादी के साथ दोनों बैटर्स, चाहे मैरिजन कैंप हो जो अभी अभी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और टैस्मिन ब्रिट्स जो कि सलामी बैटर के तौर पर आई थी, दोनों ही खुलकर खेल नहीं पा रही हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है, बाउंड्री लाइन पर लिंसे स्मिथ मौजूद थी, अंदर की ओर दौड़ी और एक रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगी दोनों बैटर्स को। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है सातवें ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच का, जहां पर इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, और इस समय जब दो विकेट दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की ओर से, मैरिजन कैप बहुत ही अनुभवी और उनके साथ टैस्मिन ब्रिट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो पारी को सजाएं सवारे। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है, 61 रन स्कोर हुआ है दो विकेट के नुकसान पर, अभी भी 170 रन का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में न तो आसान कहा जा सकता है ना ही कठिन कहा जा सकता है। इवन स्टीवंस मामला लग रहा है, अगर हम स्कोर के लिहाज से कंपैरिजन देखें तो भी लगता है कि दोनों टीमें लगभग बराबरी की स्थिति में है। इस बार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, ऑफ साइड में धीमे से पुश भर किया गया था गेंद, हालांकि स्ट्रोक जरूर खेलना चाह रही थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मैरिजन कैप, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, एक रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। तो स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, 108 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 61 गेंदें फेंकी जानी शेष है, भले ही कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो। टैस्मिन ब्रिट्स 32 गेंदों में 33 रन बनाकर के सामने है, इस बार बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पकड़ लिया था, शॉर्ट डिलीवरी थी, हालांकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था यानी जो बाउंड्री तलाश रही थी ब्रिट्स वो तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड के सामने जब 169 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर के समाप्त होने के बाद दो विकेट गंवा चुकी है टीम साउथ अफ्रीका की, थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है, और इन दोनों बल्लेबाजों पर, इन दोनों बैटर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 100 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाना बाकी है। 8 विकेट ऑफकोर्स सुरक्षित हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, 6.3 रन प्रति ओवर के औसत से टीम रन बना रही है।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: No boundaries for 27 balls and just as I say that, steps out of a crease and flares it towards the extra cover region. The Tasman Brits picks up a 4.
4: ये लगा आभा का चौका।
3: Charlie Dean, the English vice captain, starting the 11th over with a good length ball outside the off stump. Brits put her dancing shoes on, converted this into a half volley and punched it towards the left of long off and picked up a boundary. The next delivery, a full toss, and it has been bunted back towards the bowler who collects it on a bounce. So a couple of really loose balls from Charlotte Dean to start this over. Next ball, she shortens the length and the batter tries to go cross batted swipe, tries to go for

0: distance to us. She ends up bringing out the pull shot, which fetches her a boundary.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Short ball from Gibson, way outside off. This time Brits was stationed deep in her crease, and that allowed her to bring out what was a pretty agricultural pull shot. However, an effective one. The ball went towards the left of deep mid-wicket to fetch her a boundary. Next delivery on a fuller side, this time around from Gibson, outside the off stump. Doesn't move her feet at all, does Brits. However, she throws her hands at it to send the ball trickling away towards deep cover and picks up a single. 6 runs of this over from Danny Gibson. One ball still remaining. Will Sunelus look to be aggressive and try and find a boundary of this particular ball? 6 runs of the over, a boundary will mean they will have a double digit yield of it, and looks like she's going to get that boundary indeed, albeit in the form of buys.
1: Ye laga abha ka choka.
0: This is almost identical to what happened on the last ball of England's innings. Sunelus went into a horse riding, straddling stance and then shuffled towards the offside. She was basically shaping up for the scoop shot, and Gibson went wider in response. The ball finished near the tram line, but the batter failed to lay bat on ball. The keeper failed to gather it, and the ball trickled away into the ropes behind the wicketkeeper. So by signal, 12 overs done, 79 for 3 South Africa, still needing 91 more to win.
2: तो जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी दर्पण, तब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलबर्ट ने टॉस जीता था और उन्होंने ये कहा था कि एकमात्र परिवर्तन टीम में है और वो है सुनेलूस का आगमन, जो कि एक टैक्टिकल चेंज है. और सुनेलूस ऐसे मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंची हैं जब शायद उस टैक्टिकल चेंज की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है. सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है गेंदबाजी के लिए. इंग्लैंड की ओर से इस विश्व कप में सबसे सफल गेंदबाज हैं. 8 विकेट उन्होंने आज के मैच से पहले हासिल किए थे 5 मैचेस में. इकोनॉमी रेट 5.90 का रहा था और एक छोर पर बैटर लगातार नियमित अंतराल पर कहा जाए पवेलियन का रुख करते रहे हैं और 3 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं. दूसरी ओर टैस्मिन ब्रिट्स 40 गेंदों में 45 रन बना करके नाबाद हैं. इस बार स्वीप शॉट खेला गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. इनफैक्ट फील्डर तैनात हैं और बड़ी आसानी के साथ उसे फील्ड किया गया. कैंप थी वहां पर, रन बनने की संभावना थी, उसका पूरा फायदा उठाया. सिंगल से दोनों बैटर्स ने छोर बदला. तो क्रिकेट में परिस्थितियां किस तरीके से करवट लेती हैं ये इस बात की इशारा करता है. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की पारी का कुछ विवेचन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उससे पता चलेगा कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में. साउथ अफ्रीका ने बनाए 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद. इंग्लैंड ने बनाए 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर और दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इस बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस पर लिया टैडविन ब्रिट्स ने. एक्लेस्टन की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला. चार्ली डीन वहां पर मौजूद है. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर्स को. साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 88 रन चाहिए, 43 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं. इंग्लैंड का पलड़ा फिलहाल तो भारी लग रहा है. इस बार स्वीप करने के अंदाज में खेला है. कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर पहुंची थी, टैडविन ब्रिट्स के बल्ले से निकला है 1 रन. 13 ओवर के समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका 83 3 विकेट के नुकसान पर.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली. जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Nearly 12 and a half runs per over required by South Africa if they are to win this match. They are chasing 170, 83 for 3 after 13 overs, and Lauren Bell has been brought into the attack. Lauren Bell, who throughout this tournament we have seen has dedicated a couple of overs towards the death phase, has been brought back in today in the 14th over. Interesting move by England. They want to kill the game right now. They do not want to take it deep. Starts off

0: then punched it towards Charlotte Dean at extra cover, who was quick to pick it up and hurl it towards Amy Jones. However, Amy Jones was not able to gather it cleanly, or else it would have been curtains for Brits. So Brits gets a life. Can she make the most of it? Next delivery banged in short, in line with the middle pole. Brits stays besides the line, attempts a pull, connects with the bottom edge of the blade, and the ball goes trickling away towards the backward square leg region. Only a single. The first half of the over has produced only two runs. That is not ideal from South Africa's perspective. They've reached halfway the target, but have only 39 balls to score 85 more. Bell runs in, delivers another short ball outside the off stump. Sunelis brings out a pull, which is not a very robust one, not a very vigorous one. The ball trickles away into the gap between long on and deep mid-wicket, and that allows for a couple. However, ones and twos are not going to hurt England. South Africa need to find boundaries. Sunelis needs to up the ante. 7 of 11 against her name. Lauren Bell runs into bowl what will be the penultimate ball of her over. It's a slower ball on the shorter side of good length at the middle pole, and Lees brings out a robust short arm pull. The ball goes to the fence, gets her 4. Ye laga abha ka choka. Almost had to wait for the ball to arrive and delay her bat swing. However, Lees did it in accordance with the slowness of the ball, and in the end placed it well too. This is what they need more of. She placed it between mid-wicket and long on. There's a gaping gap towards it. Next delivery, short ball. This time she wasn't in control of the pull shot, and Sophie Eccleston completes another fantastic catch. Lauren Bell has delivered the goods. She has done exactly what Nat Siverbrunt asked her to do. Brought in earlier in the 14th over because England wanted to kill the game, and with the wicket of Lees, they might have done it. South Africa reeling, crumbling under pressure. They are 4 down for 91 as we head into a drinks break.
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: मुश्किल परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका, और जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, 170 रन का लक्ष्य था उनके सामने, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में इस दूसरे सेमीफाइनल में, जो कि इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, और सामने है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं तो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में ही फैसला हुआ है, और यहाँ पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार वापसी की है। पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छी वापसी की हैदर नाइट और नैट सेवरब्रंट की बदौलत। नैट सेवरब्रंट ने 75 रन बनाए, हैदर नाइट ने 58 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया नैट सेवरब्रंट ने, हैदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए, और शतकीय साझेदारी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हुई, जिसके बदौलत इंग्लैंड पहुंचे 169 रन पर। 170 रन के लक्ष्य की तलाश में जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट आउट हुई, तैजमिन ब्रिट्स एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को, लेकिन अभी सोनेलूस कुछ देर पहले आउट होकर के पवेलियन वापस लौटी हैं, और चौथा विकेट तो 6 ओवर के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 7 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 48 रन बनाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और इसी परिस्थिति में, यानी 7 से 14 ओवर के बीच में, इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन और उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, और ये वो मौका था, ये वो कंसोलिडेशन स्टेज थी जहां पर नैट सेवरब्रंट और हैदर नाइट इंग्लैंड की पारी को सजाने संवारने का काम कर रहे थे। और वही जो सजाना संवारना था 7 से 14 ओवर के बीच में, ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया है दक्षिण अफ्रीका की इस पारी में, जहां मैरिजन कैप आउट हो चुकी हैं, सोनेलूस आउट हो चुकी हैं, और कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तो सबसे पहले आउट होकर पवेलियन वापस लौटी थी। तारीफ करनी पड़ेगी

0: गेंदबाजी के रोटेशन की, जिस अंदाज में अपने बॉलर्स को रोटेट किया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लिश कैप्टन नैट सिवरब्रंट के द्वारा आज टीम में उनका आगमन हुआ था। और जैसा हम आपको बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, 48 रन बनाए हैं 7 से 14 ओवर के बीच में साउथ अफ्रीका ने, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। चार्ली डीन का आगमन हो रहा है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है। 79 रनों की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका को 36 गेंदें फेंकी जानी शेष है, 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 91 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। टैस्मिन ब्रिट्स 43 गेंदों में 47 रन बना करके खेल रही है, बैकफुट पर जाकर के पंच किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इसके साथ ही टैस्मिन ब्रिट्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 44 गेंदों में 51 रन बना करके वो क्रीज पर हैं, 115 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। तो क्या अकेला चना कुछ कर सकता है टैस्मिन ब्रिट्स? इसका जवाब देने के लिए फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक और मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में उछली है, मिड ऑफ की दिशा में कैच लिया गया है, वहां पर कप्तान नैट सिवरब्रंट मौजूद है, और इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को लगता हुआ ये पांचवां झटका, 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चार्ली डीन को एक और सफलता, टैस्मिन ब्रिट्स की पारी का भी अंत हो चुका है।
2: The hopes are dwindling. The target of 170 looks further and further away. Looks like South Africa's wait for that elusive ICC trophy in women's cricket will continue if they continue to bat like this. Tasmin Brits, who scored her 16th 50 in T20Is and is the second leading run scorer, consumed 45 deliveries, and just when the required rate was getting to intolerable levels, she tried to go big, stepped out, tried to go for an ambitious swing of the bat, completely miscued it, and an easy catch for Nat Sivabrant. South Africa are 95 for 5. Two batters who are yet to face a ball are out in the middle, albeit two very credible batters, two very credible lower order hitters, Chloe Tryon and Nadine De Klerk. Chloe Tryon is currently on strike, and we have seen both these batters pull South Africa out of dire situations before, and they need it more than ever today. Charlotte Dean continues, delivers this one on a good length, the ball spinning in towards the middle end leg. The batter Chloe Tryon presses forward and then uses her wrists to turn it towards mid-wicket and picks up a comfortable single. We saw the wicket of Sune Luce in the previous over, where a shot ball from Lauren Bell got too big on Sune Luce, and Luce went for that pull shot which she wasn't able to control. A good catch was taken by Sophie Eccleston at short fine leg. After that, in this over, we saw the wicket of Tasmin Brits, who had scored a half century. Flatter trajectory this time around from Charlotte Dean, delivers this one on a good length in line with the off and the middle stump. Nadine De Klerk gets a stubborn full face behind the ball and blocks it. Of course, she will need a couple of balls to get her eye in, to gauge what the surface is doing. You can't expect her to explode from ball one. Next delivery onto the pads, it has been nudged in a deft manner, bunted away almost towards the front of square leg. There is no fielder there, and hence Charlie Dean runs across to field the ball herself and ensures that the batters do not get more than a single. So it has turned out to be a good over for England once again. The required rate going over 14 and over. South Africa need boundaries and need plenty of them. Good length delivery on the middle stump, which Chloe Tryon gets forward to and bunts it towards long on. Picks up a single, end of the 15th, 98 for 5.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 15 ओवर के बाद 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 170 रन का, यानी अभी भी 72 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना है, और 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है।

0: 15 ओवर के बाद 98 रन 170 रन का लक्ष्य पहाड़ सा दिख रहा है और डेनिन डी क्लर्क और क्वेट्रायन इस समय मैदान पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही बैटर्स ने 2 और 3 गेंदें खेली हैं, यानी दोनों ही नए बैटर्स हैं इस समय क्रीज पर और दक्षिण अफ्रीका पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब होती हुई इंग्लिश टीम। नैट सिबर ब्रंट ने न केवल आज बल्लेबाजी बेहतरीन की है बल्कि उन्होंने गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया है जिसका सुपरिणाम उनको मिला है और 2 कैच भी उन्होंने लिए हैं। मेडलो लेग स्टंप की दिशा में गेंद, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जैकलिन विलियम्स की ओर निगाहें जा रही थी कि क्या वो वाइड करार देंगी इस बॉल को, और काफ़ी विस्मृत से दिख रही हैं, अचंभित से दिख रही क्लोट्रायन, क्योंकि उन्होंने एम्पायर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन एम्पायर का फैसला कि संभवतः पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करार नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टकराने पर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, 1 रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। चार्ली डीन आज जो विकेट ले चुकी हैं उसको मिला करके लीडिंग बॉलर्स की कैटेगरी में वो 5वें पायदान पर आ गई हैं। उन्होंने 9 विकेट अब तक हासिल किए हैं इस T20 विश्व कप में, 3 गेंदें उन्होंने इस ओवर की डाली हैं और काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है। 71 रन अभी भी चाहिए, 27 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं, 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बाएँ हाथ से जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, पॉइंट के दिशा में गेंद पहुंची थी, नैदीन डी क्लर्क के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक लेकिन रन के लिए नहीं। कैंप इस समय गेंदबाजी कर रही हैं जिनका हमने जिक्र किया था कि जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी गेंदबाजी में नहीं है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लगभग 7-8 कदम का उनका रन अप यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस पर उसे पिक किया गया है एडिन डी क्लर्क के द्वारा, 1 रन मिलना चाहिए। पारी का ये 16वां ओवर है और 100 रन पूरे हो गए हैं, हालांकि तालियों से उसका अभिनंदन किया जा रहा है ओवल के मैदान पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, साउथ अफ्रीका के डग आउट में भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय परिस्थितियां बहुत ही खराब और गंभीर कही जा सकती हैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज कैंप के और इस बार फिर से वो लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई गेंद पैड से टकराई है, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 16 ओवर्स के समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 69 रन चाहिए, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। कैंप ने एक बहुत ही प्रभावशाली ओवर समाप्त किया, 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, सिर्फ 11 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मुकाबले अब तक होते रहे हैं, कुछ अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें नॉकआउट मुकाबलों के बारे में, तो 2017 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को हरा करके इंग्लैंड ने मुकाबला जीता था, आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था। तब से जो कंप्लीट मैचेस हुए हैं, 6 कंप्लीट होने वाले नॉकआउट मैचेस में इंग्लैंड ने 4 हारे थे और 2 जीते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो उस आंकड़े को बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं और देखना होगा कि बाकी बचे हुए 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की पारी कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल 69 रन चाहिए 24 गेंदों में।
1: Charlie Dean to bowl her final over. It's now or never for South Africa. First delivery from over the wicket on a good length, drifting in towards the middle pole. Chloe Tryon steps out of a crease and then drives it along the carpet towards the long on fielder. Picks up only a single. But I, at the risk of sounding like a broken record, will reiterate that ones and twos are not going to hurt England. Next delivery, slightly flatter trajectory, on a length at the stumps. De Klerk backs away to the leg side and then flays her hands away from the body to push it towards the cover region and picks up a couple before Nat Siver Brunt chases it down. Interestingly, Nat Siver Brunt has been running around like a free spirit right throughout this match, even when she was batting, even when she's fielding. The reason why I point that out is because, remember, she is recovering from a calf injury and we were assuming that she might not be 100% fit, but she has laid all those demons to the bed. Around the wicket, this time around from Charlotte Dean, delivers this one in line with the body of Nadine de Klerk, who had back

0: away to the leg side. In the end, de Klerk was only able to adjust into a dink towards mid-wicket, picks up a single. Next delivery back over the wicket, and Chloe Tryon unfurls a big shot and gets a boundary.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: A quicker delivery from Charlie Dean. She fired this one in at the stumps on a foolish length. However, the batter, almost as if she was anticipating it, shuffled to the onside in order to give herself the room to swing her arms, went inside out over extra cover, and the ball bounced only once in the outfield before crossing the ropes. Changes her angle once again. That Charlie Dean will be looking to bowl in line with the body, exactly what she does, and there's a misfield which produces another boundary for South Africa.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: As soon as the bowler changed her angle, Tryon was expecting it to be delivered in line with her body. She shuffled half a step towards the onside only after the ball had left the bowler's hand, and thereby there was no opportunity for Dean to adjust. She drilled it towards long off, where it should have been an easy stop for Lindsay Smith. However, she fumbled and allowed a boundary. Next delivery in line with the body. Tryon crouches and swishes across, ends up finding Lauren Bell at short fine leg. No runs to be had. 17 done. South Africa still needing 57 more to win.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: ये मत जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
5: 17 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस बार हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट शो खेला. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की पर दिशा में जा रही है गेंद. डीकला के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका.
1: ये लगा आभा का चौका.
5: 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत चौके से की है. स्टेप आउट किया था, 2-3 कदम हाफ वॉली पर पिक किया था बॉल को, सर्किल को क्लियर किया था. तीन खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में सर्किल के अंदर तैनात हैं. 4 रनों का इजाफा डी क्लर्क के स्कोर में. लो फुल टॉस पर ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग सर्किल के मुहाने पर. अच्छा बैकअप भी आता हुआ. कैंप बहुत ही सक्षम क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो थोड़ी कोशिश हो रही है फ्लरिश की, कुछ रनों की रफ्तार बढ़ाने की. लेकिन परिस्थितियाँ बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि आधी टीम पेवेलियन में है. हालांकि इस समय दोनों जो बैटर क्रीज पर मौजूद हैं वो काफ़ी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं. इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला गया है, और जब बॉलर देख रही हैं कि बैटर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो शफल करें, लेग स्टंप के बाहर निकल जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, स्टेप आउट करें, कुछ रिदम जो है उसको तोड़ने की कोशिश करें गेंदबाज का, तब उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश भी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा. क्लोए ट्रायन 10 गेंदों में 12 रन बनाकर के क्रीज पर हैं. बोल्ड हो गई हैं, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्ट्रेटिश डिलीवरी. तारीफ करनी पड़ेगी सोफी एक्लिस्टन की, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि सफलतम गेंदबाज है इंग्लैंड की ओर से. पहली गेंद पर चौका लगा जरूर था, लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी की है. स्ट्रेटिश डिलीवरी बाएं हाथ से, राउंड द विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ट्राई किया, गेंद की लाइन में आए बगैर, और बोल्ड हो गई है. तो ट्रायन, उनकी पारी का अंत हो चुका है. 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद ट्रायन ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उनकी पारी में शामिल, और अब साउथ अफ्रीका के डगआउट में सिर्फ और सिर्फ निराशा पढ़ी जा सकती है. और इसके लिए जरूर निश्चित तौर पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट तारीफ करनी पड़ेगी नैट सिवर ब्रंट के करिश्माई प्रदर्शन की, जिन्होंने आज, जिनका आगमन हुआ इंग्लैंड की टीम में, उन्हें शामिल किया गया. काफ इंजरी से जूझ रही थी, पिछले 3 मुकाबले खेली नहीं थी, उसके पहले 2 मैचेस खेली थी, लेकिन आज आते ही उन्होंने चमत्कार किया. जब इंग्लैंड पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर था, 4th विकेट के लिए शतकी साझेदारी निभाई हैदर नाइट के साथ. अब जैफ्टा का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक विकेट कीपर है, लेकिन विकेट कीपर बैटर के तौर पर उनको जाना जाता है. एक्लेस्टन की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर तेजी से रन चुराने का प्रयास था, कामयाब होती हुई जैफ्टा. उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है.

0: तो 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक हताशा में खेला गया स्ट्रोक कहा जा सकता है, जहां पर आपकी कोशिश होती है कि आड़ा तिरछा कोई भी स्ट्रोक खेल करके रन बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के पास, 18 ओवर के बाद 119 रन, दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: It's nearly 9:30 p.m. in London. The sun went down 10 minutes ago and looks like at the same time the sun went down for South Africa too. 12 balls remaining. They need an improbable 51 runs to win. England have plenty of options. They go to Lauren Bell for the penultimate over. It's Sinalo Jafta on strike. 119 for 6 South Africa, and the over starts with a comical incident, slower delivery from Lauren Bell, but almost as if Jafta was expecting a pace on delivery. She swished into a horse straddling stance, stood outside the off stump waiting for the ball to arrive and play the lap shot, but the ball never arrived. It was a slower ball. She kept on waiting, and then eventually when she played her shot, she was still early into it. So a dot ball to begin the penultimate over. Next delivery, another slower one, possibly the leg cutter from Lauren Bell. It finishes outside the off stump. Jafta was looking to drive it on the up, possibly through the cover region, but wasn't able to lay bat on ball. Two dot balls means 51 runs now needed off 10 balls. If my math serves me right, that's 5.1 per ball. It is getting out of South Africa's reach. Next delivery, another slower ball. By now, Jafta should be anticipating it. Oh, she's got run out. She pushed it towards Danny Wyatt-Hodge at backward point and set off for the run. Wyatt-Hodge took her time, aimed for the bullseye at the striker's end, and then scored a direct hit. She punches the air in delight. She wasn't able to contribute with the bat in her hand in the manner she has been doing in the group stages, but she has contributed in the field. Danny Wyatt-Hodge effects that run out. Sinalo Jafta, after an innings which lasted 4 balls, she scored 1 run and now she's walking back to the dugout. South Africa in dire straits, 119 for 7. It won't be wrong to say that they are on the brink of elimination.
0: Yeah, bilkul. Dakshin Africa ke fans jo hain, unhone oval maidan se ab prasthan karna bhi shuru kar diya hai. और इबारत ऐसा लग रहा है कि लिखी जा चुकी है, दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर और इंग्लैंड जीत की दहलीज पर ओवल के मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आयाबोंगा खाका का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक गेंदबाज हैं। बल्ले से क्या कुछ खास योगदान रहा है, उनका स्ट्राइक रेट है 61 का और सर्वोच्च स्कोर है 12 नाबाद रन जो उन्होंने बनाए थे। दूसरे छोर पर नेडिन डी क्लार्क हैं, 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं। लॉरेन बेल ओवर की अगली गेंद लेकर, 2 डॉट डिलीवरीज हैं। पिछली गेंद पर एक रन आउट आया था, बहुत ही बढ़िया स्लोअर डिलीवरीज का कितना बेहतरीन इस ओवर में उन्होंने इस्तेमाल किया है। और डैनी वियाट-हॉज, जैसा कि दर्पण बता रहे थे कि भले ही बल्ले से योगदान नहीं कर पाई हो, लेकिन जो एक कंप्लीट टीम बनती है, क्रिकेट कहते हैं कि टीम गेम है, फ्लैशेज ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन जब कंप्लीट टीम, हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में अपने अपनी तरफ से योगदान देता है, तब वो सूरत हाल निभर कर सामने आती है जो इस समय इंग्लैंड के इस मुकाबले में उनकी ओर से उभर करके सामने आ रही है। पटकी हुई गेंद थी, आंख मून करके खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
0: ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं था आयाबोंगा खाका को, पटकी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक आई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का उपक्रम किया था। हालांकि गेंद की लाइन से हट गई थी, अपना चेहरा भी उन्होंने दूसरी ओर घुमा लिया था। और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर नेडिन डी क्लार्क जो खड़ी हुई हैं, उनका भी बल्ला गिर गया। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि

0: इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। लैंडन डी क्लार्क, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कहीं बहुत दर्द होगा कि आज भी टीम उनकी कामयाब नहीं हो पाई है। यॉर्क करने की कोशिश थी, परफेक्ट यॉर्कर लॉरेन बेल ने बोल्ड कर दिया है अयाबोंगा खाका को और 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर अब पहुंच चुका है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर, यानी सिर्फ दो खिलाड़ी आने बाकी। लॉरेन बेल की कितनी तारीफ की जाए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने की है। बैक ऑफ द हैंड से फेंकी गई उनकी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, एक माइटी हीव का प्रयास मिड ऑन लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अयाबोंगा खाका की इस पारी का अंत हुआ जहां पर एक मिस्क्यूड चौका उनके बल्ले से निकला था। 3 गेंदों में 4 रन बना करके वो पवेलियन वापस जा चुकी हैं और अब कह सकते हैं, वैसे क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन जीत दर्पण सिर्फ एक औपचारिकता इंग्लैंड की टीम के लिए।
1: Of course, 47 needed of the final over. Let's do the math. It's not possible, you know it. 123 for 8 South Africa, and possibly for the last time in international cricket, Shabnim Ismail makes her way to the 22-yard playing strip, albeit as a batter. She's not in the side for her batting. She announced her retirement in 2023, came back specifically for this tournament, but it looks like South Africa will not be able to go all the way. Semi-final coming to fruition, last 6 deliveries remaining. South Africa need an improbable 47 to win, and Nadine de Klerk is on strike. Lindsay Smith to bowl the final over. Starts off with an arm ball slanted in towards the leg stump off a good length. The batter backs away and then works it through the gap between backward point and cover. And Freya Kemp, who was stationed at cover, runs across to the boundary and then puts in a slide to pick up the ball and keep the batters down to 2. 125 for 8, 5 deliveries remaining, and South Africa need a bazillion runs to win. Only going through the motions here. 5 balls before the match comes to an end. There comes a slog sweep from Nadine de Klerk. The ball's in the air and it will land safely. Danny Gibson ran in from the mid-wicket boundary and could not get to the ball. A comfortable single taken. However, it's not going to haunt England. 126 for 8 after 19.2.
0: 19.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इंग्लैंड की ओर से, यानी आखिरी 4 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और जैसा हमने पिछले ओवर के आखिर में कहा कि जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही है इंग्लैंड के पक्ष में, और वो T20 विश्व कप जो कि उनकी ही मेज़बानी में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, फाइनल में पहुँचने की दहलीज पर हैं। अगली गेंद जिस पर शबनम इस्माइल ने ऑन साइड में धीमे से खेला है गेंद को, 1 रन के लिए दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है। और इस मुकाबले में मैरिजन कैप ने सबसे ज़्यादा डॉट डिलीवरी डाली थी लेकिन लॉरेल बेल ने उनको मैच कर लिया है। 12-12 डॉट डिलीवरीज डाली गई हैं दोनों गेंदबाजों के द्वारा। लिंसे स्मिथ आई हैं इस पारी का आखिरी ओवर लेकर, फ्लैटेस्ट डिलीवरी है, अंदरूनी किनारा लिया है, लॉरेन बेल के पास पहुंची है, शॉर्ट फाइनल की दिशा में। रन बनने की कोई संभावना नहीं, 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 4 रन बने ज़रूर हैं लेकिन मुकाबला लगभग समाप्त। और मैच के समाप्त होने के बाद आप सुनेंगे स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम हीरो 2020।
1: नेक्स्ट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ऑन अ गुड लेंथ गोज फॉर अ लॉफ्टेड शॉट। डज नदीन डी क्लर्क फाइंड्स एब्सोल्युटली नोवेयर नियर द डिजायर्ड टाइमिंग। द बॉल लैंड्स वेल शॉर्ट ऑफ द लॉन्ग ऑफ फील्डर एंड बिफोर द फील्डर कैन पिक इट अप थ्रो इट बैक टू द 22 यार्ड प्लेइंग स्ट्रिप अ कंफर्टेबल सिंगल हैज बीन टेकन दैट टेक्स द स्कोर टू 128 and that brings Shabnim Ismail on strike. Final ball of the second semi-final. The result is a foregone conclusion, but possibly for the last time in international cricket, we will see Shabnim Ismail in action. Here comes the arm ball, which pitches outside the leg stump and then moves towards the stump. Ismail tucks it towards backward square leg, picks up a single, and just as the ball becomes dead, the celebrations begin in the England dugout. 129 for 8 is what South Africa have managed. There's a sonic explosion in the stands at the Oval as the home crowd celebrates the victory of their women's team. England's men

0: team's former World Cup winning skipper Owen Morgan, who's in attendance, gives the women's team a standing ovation. They won this match by 40 runs and moved one step closer to achieving that dream which they have waited for a while now. It was in 2017 last time England's women's team achieved an ICC trophy. Will they be able to do it in 2026? The last time they won a T20 World Cup was back in 2009 under the captaincy of Charlotte Edwards, who's currently on the park hugging and delivering handshakes, congratulating the English players. She's the head coach of the team currently. And with these joyous scenes, it is time for us to say goodbye here from the Akashwani commentary box. You were listening to Darpan Tikya in English, Shivendra Chaturvedi in Hindi. We had the company of scorer Sunil Dige and the statistician Jatin Sood, who provided you intriguing facts from around the game. The final would be played on 5th of July between ARC rivals England and Australia at the Lords. With that, we leave you. However, don't go too far, because our special program Hero 20 is coming up next.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Player of the match.
6: England continue with their ruthless run to hand South Africa a 40-run loss in the second semi-final, which now means that two unbeaten teams would be facing off in the summit clash, Australia and England. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha, and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
7: And Megha, our mehman, Khyati Gulani, former cricketer, Jishanul Yaqeen, former cricketer, and G. Rajaraman, varisht khel patrikar. Raja, शुरुआत फिर से आप ही से करते हैं। कंडीशन का बेहतर फायदा उठाया इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले, क्योंकि गेंदबाजी भी देखें बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार हुई। जो फील्ड थी उसके अनुसार गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कप्तान ने धीमी गति के गेंदबाजों का ज्यादा इस्तेमाल किया, सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में रहा।
8: बहुत चालाक अप्रोच था, बहुत ही चतुर अप्रोच था। आई थिंक सेंसिबल और स्मार्ट है कि गेम जीतना है आपको और उसके लिए जो करना है इंग्लैंड ने वो सारी चीजें की है, सिवाय टॉस जीतने वाली बात। देखिए टॉस में भी इंग्लैंड की कप्तान बोल रही थी कि वो भी गेंदबाजी करना चाह रही थी पहले, लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता गया पिच और धीमी होती गई एंड बॉल वॉज कीपिंग लो, तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। 40 रन बहुत ज़्यादा होते हैं सेमीफाइनल में, 180 और 140 की बात हम कर रहे थे, लेकिन 40 रन से काफ़ी आसानी से जीता है। वन साइडेड मैच रहा, फैंस निराश रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश तो साउथ अफ्रीका होगी कि दो बार लगातार फाइनल खेलते हुए तीसरी बार हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन दे ओनली हैव देमसेल्फ टू ब्लेम।
6: Kathy, continuing that conversation about England's bowling attack, all-round show from the bowlers, every bowler contributed their bit in creating pressure on the batters.
9: Yeah, definitely. If you see this Eccleston and they Lauren Bell, they have participated really well, and their batters as well. And if we talk about fielding also, I mean, they are far ahead from the other team. And the bowlers like Lauren Bell, she brings little flavor in that. Eccleston, she's known for her breaking the partnerships. I think it was a very good performance by the bowlers.
7: और जिशान, अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजी की, जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी रही, खास तौर पर कप्तान वुल्फार्ड अच्छे टच में आज दिखाई दे रही थी, पावर प्ले के जो ओवर्स चल रहे थे उसमें ठीक ठाक रन भी आ रहे थे, आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त उनको और बिताना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ उस समय तक उनके हक में जा रहा था?
10: बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास यही दो बैट्समैन थे जो कि परफॉर्म करते आ रहे थे शुरू से, और साउथ अफ्रीका के जीत में सबसे बड़ा अहम किरदार जो था इन्हीं दोनों का था,

0: पाई, क्योंकि कप्तान जब आउट हुई तो उसके बाद लगा कि पूरी टीम बिखर गई है। हाफ सेंचुरी जरूर ब्रिट्स की तरफ से आई, लेकिन कोई उसमें बल्लेबाजी में लय नहीं दिख रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रही है, लगातार विकेट गिर रहे थे, लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा था।
1: डेफिनेटली आई मीन बेटर प्लान के साथ आना चाहिए था, आई एम श्योर दैट मैनेजमेंट से बात हुई होगी ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम एज वेल, ऐसे कोई सजेशंस आई एम श्योर दिए होंगे, प्लान ए होगा, प्लान बी होना चाहिए, बट हाँ द अप्रोच वॉज नॉट आई मीन अप्रोप्रिएट फॉर दिस बिग गेम। इससे बेटर अप्रोच की उम्मीद थी। आई थिंक इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ पे ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आए थे और दे न्यू द कंडीशंस एज वेल, उनको पता कि कौन सा किस तरीके से आपको कौन से स्ट्रोक्स यहाँ पे आपके ऑन रहेंगे, कौन से स्ट्रोक्स आपको रोकने हैं, और बॉलर्स भी बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे, अपने फील्ड सेटिंग बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट द वे द फील्डर्स वर फील्डिंग वॉज ऑल्सो कमेंडेबल।
2: जीशान अपेरेंटली प्लान ए बी सी साइमल्टेनियसली लेकर चल रही थी साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि एक सवाल जो लगातार उठ रहे थे, क्योंकि फाइनल्स सेमीफाइनल तक पहुंच गई तो शायद फिर वो सवाल कम हो गए थे, वो ये था रोल क्लैरिटी का, क्योंकि खिलाड़ियों को एक सेट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, एक सेट रोल वहां पे नहीं दिया जा रहा था।
3: बिल्कुल, देखें मैं क्रिकेट का एक बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और मुझे नहीं मालूम कि उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं या जो कोई भी उनको समझाते होंगे कि कैसे खेलना है क्या है, वहाँ मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई उनको कोई गाइडेंस मिल रहा था, इसलिए कि जो भी बैटर आ रहे थे वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, मुझे नहीं लगा कि कोई कहीं से गाइड करने की उनको कोई दी जा रही थी। हाँ ये ज़रूर है कि अगर प्लान ए ख़राब होता है कि कैप्टन अगर उनकी शुरू में आउट हो जाती हैं और एक बैटर अगर खेल रही है, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ज़्यादा ये होना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा कि अगर इस मैच को जीतना है तो इनको रोटेट करना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ के रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये कोशिश करेंगे ये कि हम चार से और छः से कोशिश करके और निकालेंगे मैच को, तो वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इनके जो बाकी जो बैटर रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में है बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। यही दो जो ओपनर्स थे इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं और बैटिंग करके अपनी टीम को जिताने की कोशिश की है। जब इन्होंने देखा कि इनके कैप्टन आउट हो गए हैं, तो इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो एक तरफ अगर वो खेल रही थी तो उनको ये कोशिश करना चाहिए कि वो हिट करती, दूसरा जो बैटर आता उससे ये बात करना चाहिए था कि इनको रोटेट करो रोटेट करो, ये प्लान बी होने चाहिए थे, जो कि नज़र नहीं आए मुझे यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी। वो एक बिखरी सी टीम नज़र आ रही थी, वो बिखरी सी टीम अगर सेमीफाइनल जैसे स्टेज पे आने के बाद से ऐसे बिखर जाना थोड़ा सा मुझे अफसोसनाक ये रहा है इस मैच को देखने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इंग्लैंड के जो की जो कैप्टनशिप रही है इसमें, उनकी फ्लीट प्लेसमेंट, उनकी फील्डिंग्स, उनकी बॉलिंग का वो तरीका जहां बॉल डालना चाहिए था स्पेशली, मुझे खासकर रमन सर अगर आप याद होगा कि हम लोग भी बात कर रहे थे पीछे भी इस सिलसिले में कि कैसे क्या होगा आगे की वो चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैक किया है।
2: बिल्कुल, और इस पे कैसे देखते हैं दो कप्तान, इसे कैसे इसका आकलन करते हैं, आइए सुनते हैं पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान लॉरा वॉल्फार्ट और उसके बाद इंग्लिश कप्तान को।
4: Today by a really good England side, and yeah, I think they played really well.
5: You've been in situations like this before and you've been able to get over the line, so what was different this evening?
4: Not too sure. I think the main difference between our innings and theirs is just they had so many more partnerships. Obviously we started really well with the ball and then they had that really big partnership, and I think we just didn't have any partnerships to sort of speak of, and didn't really have any batters that really got going. So frustrating to lose this way on a big stage, but yeah, we'll go back to the drawing board.
5: Did the pitch play as you expected to in that second innings, and what did you feel was chaseable at the halfway stage?
4: Yeah, I thought it was a pretty decent pitch, coming on quite nicely. Thought 170 was about par, pretty happy with that. Yeah, I thought, especially with the outfield as well, it's lightning, I thought it was going to be tough to defend. But yeah, I think they bowled pretty well, clearly had different plans for us, and yeah, we weren't able to step up.
5: How difficult is it to play against a team that have so much home support as well at a ground like this?
4: Yeah, I think it does play a role, but it was so cool to see so many fans here tonight. I think it just adds sort of to the vibe and the energy. A couple of South Africans as well that I saw, so yeah, that was nice.
5: And just lastly, just on South Africa on the whole through this tournament, you know, a lot of positives obviously for you to get to this point. How will you reflect on, you know, what you put

0: We'll leave it at that. Well done this evening. Now, congratulations on your own performance to Heather as well, and for the overall team performance. All the best on Sunday.
1: Thank you.
2: तो साउथ अफ्रीका पर 40 रन की जीत के साथ इंग्लैंड की टीम चौथी बार बल्कि पांचवी बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है और चौथा ऐसा मौका होगा जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से उसका सामना होगा। 2012, 2014 और 2018 में भी इन दोनों टीमों के बीच फाइनल हुआ था। परिणाम राजा बिल्कुल उसी अनुरूप है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा था इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कि फेवरेट टीमों में ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी।
3: ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही होती है। आई थिंक ऐसा कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो नहीं सकता जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का महिला टीम आप उनको फेवरेट ना माने। साउथ अफ्रीका का चैलेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड घर पर खेल रहा है और वो दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, तो इंग्लैंड वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट टू मेक इट टू द फाइनल। और यही देखने मिला है कि दो अच्छे टीम होंगे फाइनल में, और उम्मीद यही कर सकते हैं फैन बन के कि फाइनल अच्छा मुकाबला हो। क्रिकेट डिजर्व्स गुड कॉन्टेस्ट, नॉट वन साइडेड मैचेस, खास करके टी20 में जब आप 40 रन से जीत रहे हो और दोनों सेमीफाइनल काफ़ी वन साइडेड रहे हैं, तो होपफुली फैंस विल गेट अ गुड फाइनल।
2: और श्रोताओं, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ, सवाल कोई करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय है आपकी, तो हमें कॉल कर सकते हैं 0112342108 और 0112342108 पर। और हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अरविंद जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी जी, और सवाल कोई आपका? जी ये बहुत अहम सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बड़े मौकों पर अक्सर जो है फिसल जाती है, हालांकि पिछले दो मौके ऐसे जरूर रहे ख्याति जब इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी थी, लेकिन ये एक बार फिर ऐसा मौका आया जहां साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ाई और फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
4: जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड की जो टीम है वो पूरी प्रॉपर प्लान के साथ आई थी, हर चीज़ का उनका एक प्लान रेडी था, बॉलर्स के लिए प्लान ए प्लान बी था, सेम वे उनका बैटर्स के लिए भी प्लान ए प्लान बी था, तो वो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी चूक हुई है साउथ अफ्रीकन टीम से, जो होती रही है। थोड़े बेटर होमवर्क के साथ वो आ सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में पहुँचते हैं तो आपको किस टाइप का गियर लगाना है और आपके कौन से प्लेयर्स आपको एज अ बॉलर्स यूज़ करने हैं अगर कोई अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। इतने अच्छे 3 विकेट स्टार्टिंग में लेने के बाद जो पेसर्स ने काफ़ी अच्छा आई थिंक प्रदर्शन दिया, उसके बाद जो उनके स्पिनर्स उतना पिच इन नहीं कर पाए।
5: 2011 के विश्व कप से पहले पुरुषों के विश्व कप में किसी भी मेजबान टीम ने जीत नहीं हासिल की थी, उसके बाद एक सिलसिला सा शुरू हो गया जहां पे कई बार मेजबान टीम ने खिताब जीता। महिलाओं के विश्व कप में हालांकि 2009 में जब पहली बार टी20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड ने खिताब जीता, 2017 में ओडीआई विश्व कप अपने नाम किया घर पे, अभी वापस घर पे खेल रही है इंग्लैंड की टीम, तो काफी सारे बॉक्सेस इस नैरेटिव में टिक हो रहे हैं। जीशान
6: कह सकते हैं इस चीज़ों को, खैर ये तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा
5: कोइंसिडेंट
6: माने इसको या आप ये कहें, लेकिन सच ये है कि होम सीरीज कोई भी अगर होती है या होम कोई टूर्नामेंट बड़ा होता है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर से वहाँ की होम टीम को होती है। उसकी वजह है कि बहुत सारे ख़ासकर जो वुमेंस की टीम का ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो कहीं अगर कमेंट्री भी कर रहे हैं और अपनी कमेंट्री में भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ को आइडिया लगता है और उसके ऊपर में भी अमल करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझें कि वहाँ पर इनको बहुत सारे सपोर्ट्स हैं इंग्लैंड को आज के दिन में, अगर होम सीरीज़ होती है तो। हमारे यहाँ भी होता है, अगर हमारे हिंदुस्तान में भी अगर इस तरह का कोई होम सीरीज़ होता है तो वहाँ हमारे यहाँ भी जो बड़े लीजेंड जो कमेंट्री में बैठे होते हैं वो कुछ कुछ अपने हिंट इससे देते हैं जिससे कि उससे फ़ायदा होता है। तो मैं ये ज़रूर से कहूँगा कि ऑब्वियस है 2009 के बाद से 2026 का जो ये टूर्नामेंट है कहीं ना कहीं

0: वो रिपीट होने की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
1: और मेघा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका, नाम बताइए। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बताइए सवाल जी।
2: So Sanjay ji, advocating for further innovation. Now the two things that he touched upon involve a lot of subjectivity, because wherever humans are involved in decision making, obviously there'd be that subjective perspective. I think this was better, you think that was better. Raj.
3: So we'll never be satisfied. Any amount of technology, let's take LBW. Pehle to technology aaya, usme bhi humko, we are finding gaps there. The DRS is supposed to have improved the decision making, lekin I think we are still only 95%. We can never be 100%. Aur cricket ek aisa khel hai mega jahan pe humans khelte hain, to human ka judging element zaruri hai. I am of the firm opinion that we should leave everything to the umpires. Technology bahut zyada use karne se dikkatein aane lagi. I think we are relying too much on data and very little on emotion. I think sport is about emotion, and if we can go back to keeping it an emotional thing, it'll be good. Lekin there is also some kind of validity in asking for data and for data to be used in decision making processes. But I think ये बहुत simple game है, हम इसको complicate कर रहे हैं by getting in too much technology.
1: और ख्याति अगर आज के match पर लौटें, बहुत जबरदस्त जीत रही है इंग्लैंड की, और कंडीशन की बात हो रही थी और तमाम चीजों की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब फाइनल मुकाबला होना है। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप की टॉपर, सेमीफाइनल में आसान जीत, और इधर इंग्लैंड के साथ भी बिल्कुल वही हाल, अब फाइनल कैसा होने वाला है?
4: देखिए, अगर आप देखेंगे उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करें ऑस्ट्रेलियन टीम का, वहीं पे इंग्लैंड टीम को आई थिंक अपने जो टॉप थ्री बैटर्स हैं उनको थोड़ा और बेटर प्लान के साथ आना होगा, कि इस टीम के साथ आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आपके पहले तीन बैटर्स जल्दी आउट हों, क्योंकि उनके पास वैसा बॉलिंग लाइनअप भी है जो वो कम बैक कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपके पास, आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिलता है विद योर ओपनिंग बैटर्स, डेफिनेटली देन आप उस कॉन्टेस्ट में होंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया।
2: जीशान, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जो विविधता है, उनके पास लेफ्ट आर्म एंगल है लूसी हैमिल्टन का पेस में, और स्पिन में भी दे हैव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड।
0: देखें, प्लेयर्स जो भी हैं उनके पास में, आप जिनके भी नाम ले रहे हैं सारे हैं, और भी सारे उनके अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास में ऑस्ट्रेलिया के पास। जो सबसे बड़ी जो खासियत है उनमें, कि उनके पीछे में 6 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप का एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट करने की उनके पास में एक चीज़ है, जो कि इंग्लैंड के पास में नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ में ज़रूर से है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और अगर इंग्लैंड की टीम, दोनों टीमों को हम देखेंगे अभी के वक्त में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम जो देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इंग्लैंड टीम जो है

वो अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, जिस हिसाब से उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो फाइनल मैच है वो बहुत बेहतरीन मैच होगा। और कहीं ना कहीं मुझे अब एहसास ये हो रहा है, या इंट्यूशन से हो रहा है मुझे, कि कहीं वो 2009 वापस जो कह रही थी कि क्या घर वापसी होएगी क्या, तो मुझे लगता है कि वो घर